मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे इस जोड़ो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कर नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक

0: उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर ने मनुष्य शरीर हमें इस जगत में अपने और दूसरों के कल्याण के निमित्त बनाया है, इसीलिए भेजा है, ना कि राग रंग में फंसने के लिए। क्योंकि राग रंग आपको किसी भी शरीर में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परम गति के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा इसी शरीर से प्राप्त होंगे।

जब हमें गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण होकर ही रहेगा, क्योंकि जहाँ हरि और गुरु की बात आती है वहाँ गुरु हरि से भी ऊपर हो जाते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
4: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
3: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, यही उचित समय है जब हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने से क्या लाभ जब वो नश्वर है। एक अनश्वर पदार्थ है राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम। जब हम ये नाम जपते हैं तो ये नाम हमारा परम कल्याण करता है, हमें परम गति प्रदान करता है और हमें इस संसार के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे देता है। ऐसा है ये हरि नाम, ऐसा है ये राम नाम।

इस संसार में हमें ईश्वर ने अहित की कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, और अब हमारा ये परम कर्तव्य है कि इस परम दुर्लभ शरीर को पाकर हम फिर ऐसे कर्म करें कि हमें फिर संसार के इस चक्र में भटकना ना पड़े, और अगर हमें आना भी पड़े तो फिर हम ऐसे शुभ कर्म, ऐसे सत्कर्म करें जिससे हमें फिर ये मनुष्य योनि ही प्राप्ति हो, और फिर हम ईश्वर को प्राप्ति करने का उपाय कर सकें। आप सुन रहे थे भक्ति संगीता कार्यक्रम आराधना, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार।
1: हम देखते हैं कि इस संसार में सब प्रकार के सुख के पीछे उसकी छाया के रूप में दुख रहता है। जीवन के पीछे उसकी छाया मृत्यु रहती है। वे दोनों सदा एक साथ ही रहते हैं, कारण वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे पृथक सत्ताएं नहीं हैं, वे एक ही वस्तु के दो विभिन्न रूप हैं। वो एक ही वस्तु जीवन मृत्यु सुख दुख अच्छे बुरे आदि रूप में व्यक्त हो रही है। ये द्वैतवादी धारणा कि शुभ और अशुभ ये दोनों पृथक वस्तुएं हैं और वे चिरंतन हैं, असंगत हैं, वे वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। वो कभी अच्छे रूप में और कभी बुरे रूप में भासित हो रही है। ये भिन्नता प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। उनका भेद वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम देखते हैं कि एक ही स्नायु प्रणाली अच्छे बुरे दोनों प्रकार के प्रवाह ले जाती है, किंतु यदि स्नायुमंडली किसी तरह बिगड़ जाए तो फिर किसी प्रकार की अनुभूति न होगी। मान लो एक स्नायु में पक्षाघात हो गया, तब उसमें से होकर जो सुखकर अनुभूति आती थी वो अब नहीं आएगी और दुखकर अनुभूति भी नहीं आएगी। ये कभी भी दो नहीं हो तो वे एक ही हैं। फिर एक ही वस्तु जीवन में कभी सुख तो कभी दुख उत्पन्न करती है। एक ही वस्तु किसी को सुख तो किसी को दुख देती है। मांसाहारी को मांस खाने से अवश्य सुख मिलता है, पर जिसका मांस खाया जाता है उसके लिए तो भयानक कष्ट है। ऐसा कोई विषय नहीं जो सबको समान रूप से सुख देता हो। कुछ लोग सुखी हो रहे हैं और कुछ दुखी, ये इसी प्रकार चलता रहेगा। अतः ये स्पष्ट है कि ये द्वैत भाव वास्तव में मिथ्या है। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? जगत में ऐसी अवस्था कभी आ नहीं सकती जब सभी कुछ अच्छा हो जाए और बुरा कुछ भी न रहे। हो सकता है इससे अनेक व्यक्तियों की चिरपोषित आशा चूर्ण हो जाए, अनेक भयभीत हो उठें, पर इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखता। हाँ, यदि मुझे कोई समझा दे कि वो सत्य है तो मैं समझने को तैयार हूं, पर जब तक बात मेरी समझ में नहीं आती तब तक कैसे मान सकता हूं? मेरे इस कथन के विरुद्ध ऊपर से युक्त मालूम पड़ने वाला एक सामान्य तर्क यह है कि क्रम विकास की प्रक्रिया में अशुभ का क्रमिक निराकरण होता आ रहा है, और यदि यह निराकरण करोड़ों वर्ष तक चलता रहे तो ऐसा समय आएगा जब वो समस्त नष्ट होकर केवल शुभ ही शुभ शेष रह जाएगा। ऊपर से देखने पर यह युक्ति एकदम अकाट्य मालूम पड़ती है। भगवान करते ये बात सत्य होती। मान लो कि वो 100 है। इसी प्रकार निर्दिष्ट परिमाण में शुभ भी है और ये अशुभ क्रमशः कम होता जा रहा है और केवल शुभ बचता जा रहा है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि शुभ के समान अशुभ भी क्रमशः बढ़ ही रहा है। समाज के अत्यंत निम्न स्तर के व्यक्ति को लो, वो जंगल में रहता है, उसके भोग सुख अल्प हैं इसलिए उसके दुख भी कम हैं। उसके दुख केवल इंद्रिय विषयों तक ही सीमित हैं। यदि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले तो वो दुखी हो जाता है। उसे खूब भोजन दो, उसे स्वच्छंद होकर घूमने फिरने और शिकार करने दो तो वो पूरी तरह सुखी हो जाएगा। उसका सुख दुख केवल इंद्रियों में आबद्ध है। मान लो कि उसका ज्ञान बढ़ने लगा, उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि विकसित हो रही है, वो जो सुख पहले इंद्रियों में पाता था अब वही सुख वृद्धि की वृत्तियों को चलाने में पाता है। अब वो एक सुंदर कविता पाठ करके अपूर्व सुख का स्वाद लेता है, गणित की कोई समस्या उसे अपूर्व रस देती है, पर इसके साथ साथ

0: उसकी सूक्ष्मतर नाड़ियां उन मानसिक पीड़ाओं के प्रति ग्रहणशील होती जाती हैं जिनकी कल्पना भी जंगली व्यक्ति नहीं कर पाता। चौथा
1: विचार
0: कष्ट।
1: बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचार। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: आज का विषय है बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल, सिंचाई प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा उर्वरक का इस्तेमाल विषय पर ऋचा गुप्ता से की गई रितेश शुक्ला की ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, किसान भाई राम राम, बहुत बहुत स्वागत बा किसान भाई आपका अपने कार्यक्रम कृषि जगत में। भैया हम सबे लगातार ऐसे विशेषज्ञ भैया या वैज्ञानिक भैया के बुलाईत है जे कि तमाम विषयन पे आपके नई नई जानकारी आपसे साझा करत हैं और वो जानकारी लेके भैया आप अपन खेती किसानी के बढ़िया करत हैं। तो भैया आज अपने बीच अगस्त के माह में सब्जियों की खेती पर जानकारी दे बिना ऋचा गुप्ता जे कि शोध छात्र हैं CSA कानपुर से आई हैं। तो ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत बा आपका।
2: धन्यवाद जी।
1: ऋचा जी पहला सवाल किसान भाइयों के मन में ही आवत है, हालांकि किसान भाई सब्जियन की खेती करत हैं परंतु किसान भाइयों के मन में ही सवाल आवत है कि भाई का उनके पास ऐसा विकल्प बाटे कि भाई गेहूँ चावल के इतर भी कुछ ऐसा चीज की जाए जैसे भाई नगदी जोन फसल होती है उनका लगावा जाए जैसे उनके फायदा मिल सके। तो जोन अभी महीना चलत बाट का किसान भाई कौन कौन से मुख्य ऐसी फसल हैं जेका लगाई सकते हैं ना उसे फायदा ले सकते हैं।
2: जी, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगी कि अगस्त माह की सब्जियों की खेती में आते हैं जैसे भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा, अरबी, बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि।
1: जी,
2: और इसमें भूमि का प्रबंधन की बात की जाए तो निराई गुड़ाई की जाती है जिसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित निराई की आवश्यकता होती है और सिंचाई बरसात में अतिरिक्त पानी निकालना और जल भराव से बचाव रखना करना चाहिए भूमि का। और खाद प्रबंधन की बात करें तो लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। अगस्त माह में सब्जियों की खेती के दौरान कई प्रकार के कीट और रोग फसल को प्रभावित करते हैं।
1: जी जी।
2: इनमें फल छेदक कीट, एफिड, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर, रेड स्पाइडर, माइट प्रमुख कीट हैं। फल छेदक कीट फल में छेद करके अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, जबकि एफिड और सफेद मक्खी पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देती हैं और साथ ही वायरस रोग फैलाती हैं। लीफ माइनर पत्तियों में सुरंगें बनाती हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और रेड स्पाइडर माइट पत्तियों को पीला करके जाल बना देती हैं।
1: जी जी।
2: इस प्रकार से रोग में आता है जैसे झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ बैक्टीरियल विल्ट और मोजैक वायरस सामान्य रोग हैं
1: जी
2: जो बारिश के मौसम में फसलों पे लगते हैं। झुलसा रोग पत्तियों को भूरे धब्बे बना देती हैं पत्तियों पर, पौधों को सूखा कर देती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू हैं सफ़ेद चूंड जैसे परत बनाते हैं और डैम्पिंग ऑफ नर्सरी पौधों को गिरा देते हैं
1: जी।
2: और इन समस्याओं के नियंत्रण हेतु नीम का अर्क, फेरोमोन ट्रैप, जैविक शत्रु और रोग मुक्त बीज और फसल चक्र और कॉपर आधारित दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और उत्पादन अधिक होगा। इस प्रकार से कीट और रोग प्रबंधन के लिए जैविक एवं रासायनिक दोनों उपायों का संतुलित उपयोग आवश्यक है।
1: जी अच्छा ऋचा जी एक जी। सवाल और आवत जैसे आप बताएं कि भाई जैविक और रासायनिक दोनों की जरूरत पड़ा था पर आजकल जैसे जो समय चला बाटे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञ भैया भी बतावत

0: इनकी
1: जी
0: जैविक खाद का प्रयोग किया जाए,
1: जी जी
0: जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाए। काहे कि भाई जब हम सब्जी हम सब खाई था तो ई प्रचलन में भी बाटे कि भाई सब जने कहते इनकी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे जोर
1: जी
0: दिया जात बाटे।
1: जी
0: तो का ऐसा चीज की जाए कि भाई ऑर्गेनिक रूप से ओका उगावा जाए और कितना प्रयोग जायज बाटे रासायनिक खाद का।
1: जी जी जी मैं आपको बताना चाहूंगी जैविक खाद और रासायनिक खाद में दोनों में फर्क क्या होता है और किसान भाई को क्या लाभ है उससे।
0: जी
1: जैसे जैविक और रासायनिक प्रबंधन दोनों ही फसल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इनका दृष्टिकोण अलग-अलग है। जैविक प्रबंधन में नीम का अर्क, नीम तेल, गोबर खाद, कंपोस्ट, फेरोमोन ट्रैप, परजीवी कीट और प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल का उपयोग किया जाता है।
0: जी
1: अब ये प्राकृतिक शत्रु लेडी बर्ड बीटल क्या है? ये एक लाभकारी कीट है जो हानिकारक कीट को खा जाते हैं, जो जिससे हानिकारक कीटों का जो संख्या है वो नियंत्रित रहती है और जो पर्यावरण अनुकूल होता है, जैसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है और लंबे समय तक टिकाऊ समाधान देता है। दूसरी ओर रासायनिक प्रबंधन में कीटनाशक और फफूंदनाशक जैसे इमिडाक्लोपाइराइड, स्पाइनोसैड, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे त्वरित और त्वरित प्रभाव परिणाम देते हैं। लेकिन अधिक प्रयोग से कीटों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और कीटों मिट्टी व पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा कि
1: जी
0: भाई दोनों के ज़रूरत बाटे पर दोनों को ऐसे प्रयोग किया जाए कि भाई आपके मिट्टी के गुणवत्ता भी बनी रहे और हमार जोन उपज बाटे
1: जी
0: वह कम ना होए।
1: जी जी
0: अच्छा बहुत बढ़िया चीज़ आप बताइन। एक चीज़ और सब्जियन की खेती में समस्या आवत है किसान भाइयन के सामने, वो बाटे चूंकि बारिश के मौसम में पानी की उपलब्धता तो रहत है, पर एक चीज़ ये रहता कि भाई पानी का जमाव हो जाता, साथ ही साथ ई इंसान नहीं समझ पावत है कि कब खाद दे के चाहिए और कब सिंचाई करे के चाहिए।
1: जी
0: तो आप एक बार बतावें कि कब कब उनकर खाद दिया जाए, कहे की बात होता है कि भाई खाद दे के बाद कब वो पानी बरस गवा तो वो खाद बही जाता, तो
1: जी
0: कब खाद दी जाए, कितने समय पे दी जाए, एकरे बारे में कुछ बतावें।
1: जी तो भूमि की तैयारी के लिए देखिए, सबसे पहले तो अच्छे जल निकास रखना चाहिए भूमि
0: जी
1: का,
0: जी
1: और गोबर की खाद कंपोस्ट का अधिक प्रयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद ये बताया जाता है कि अगस्त के माह में बारिश होना स्वाभाविक है, तो लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल में इसमें सिंचाई दिया जाए। और अगर बारिश हो रही है तो ये सावधानी बरता जाए कि दवाओं का छिड़काव कम से कम किया जाए, क्योंकि बरसात के समय में दवा बह जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, तो स्प्रे पंप में जो दवा रखी रखी जाती है उसको जो है अच्छे से घोलकर पत्तियों के ऊपर और नीचे छिड़काव किया जाए।
0: जी। ऋचा जी एक सवाल और बाटे अपन किसान भाइयों की तरफ से कि जो आपने प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र के किसान बाटेन, भाई
1: जी जी
0: जो हमारे पचन के पास जोन जमीन बाटे, जोन मिट्टी की गुणवत्ता बाटे, जोन संसाधन बाटेन, ओकरे हिसाब से हमारे आसपास के जोन किसान भाई हैं कौन तरह के खेती करें, कौन सब्जी की खेती करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कहे कि आप कई तरह की खेती के बारे में बताएं, मिर्च टमाटर शिमला मिर्च गोभी कई तरह के भाई सब्जियन के खेती
1: जी
0: होता,
1: जी
0: तो कौन की तरह की खेती किया जाए जैसे भाई कम लागत लगे
1: जी
0: और ज़्यादा मुनाफा होए।
1: जी जी तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप अगस्त के माह में बारिश के समय में आप भिंडी का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं किसान भाई,
0: जी
1: और इसका जो अच्छा बीज दर है भिंडी का, जैसे 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और दूरी जो रखे हैं बीजों का वो कतार से कतार की लगभग 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर। और खाद का प्रयोग करें, जैसे गोबर खाद है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लगभग फास्फोरस है 50 किलोग्राम, और पोटास है 50 किलोग्राम प्रति
0: बिल्कुल
1: हेक्टेयर। इस प्रकार जैसे बैंगन है, बीज दर इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है नर्सरी के लिए, और दूरी कतार से कतार जैसे 60 सेंटीमीटर है, और पौधे से पौधे 45 सेंटीमीटर।
0: बिल्कुल
1: और गोबर की खाद इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप 25 टन प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं गोबर की खाद, और नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम। इसी प्रकार से आप मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, जैसे 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिर्च का बीज दर लिया जा सकता है एक अच्छे उत्पादन के लिए। और जैसे दूरी है वो कतार से कतार 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 30 से 45 सेंटीमीटर। और खाद में गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर, इसमें गोबर की खाद का डिफरेंस सभी जो है क्रॉप में या फसलों में अलग अलग लिया जाता है।
0: अच्छा।
1: मिर्च के लिए जैसे 20 टन प्रति हेक्टेयर है, और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम है, फास्फोरस 50 किलो

0: किलोग्राम है, पोटास 50 किलोग्राम है। टमाटर इसी प्रकार सेम टमाटर की खेती भी की जाती है और लौकी की खेती और अन्य
1: जी
0: प्रकार की सब्जियों की भी खेती की जाती है, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से इसका अगर बीज का सही मात्रा में उपयोग करेंगे, बहुत क्राउडेड फसल नहीं करेंगे जैसे पास पास की बुआई या फिर पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी नियमित रखेंगे तो उत्पादन किसान भाई को अच्छा होगा। जैसे आप देखेंगे कि अगस्त के माह में कीट भी
1: जी
0: काफ़ी आक्रामक होते हैं फसलों के लिए, अब और जैसे बीमारियां हैं वो भी काफ़ी आक्रामक होती है फसलों के लिए, तो कीट इसमें लगते हैं जो अगस्त के माह में, वो लगभग जैसे फल छेदक कीट है जिसको हम फ्रूट बोरर बोलते हैं, इसका जीवन चक्र है, अंडे कहाँ देते हैं, पत्तियों में, फलों पर देते हैं, और लार्वा फल में छेद करके अंदर प्रवेश करते हैं, प्यूपा मिट्टी में बनता है और वयस्क पतंगा निकलता है। नुकसान क्या करता है ये, जैसे फल में छेद कर देगा, अंदर से फलों को खाता है और बाजार के मूल्य को फल का घटा देता है। और नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, जैसे फल छेदक कीट को, जैसे नीम का अर्क है 5%
1: जी
0: छिड़काव कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रेप है उसका प्रयोग कर सकते हैं,
1: जी जी
0: जैसे स्पाइनोसेड है या कार्बरिल का छिड़काव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, आप आइन हमारे कार्यक्रम में और किसान भाई से इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी साझा कीन। भाई निश्चित तौर पर किसान भाई जानकारी ले कि अपन खेती किसानी में सब्जियों की खेती अगर कहीं करी तो निश्चित तौर पर उसे फ़ायदा लेंगे। आप आइन, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल विषय पर अभी आप ऋचा गुप्ता से की गई रितेश शुक्ला की ये बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु, क्षमा कीजिएगा स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता सुनवा रहे हैं। विषय है दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें।
1: दंत चिकित्सा में मरीज को कुछ ऐसी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए जिसका अगर अनदेखा करें तो गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुंह का इलाज में क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक मनुष्य की बीमारी दूसरे मनुष्य में आसानी से जा सकती है या संक्रमण फैल सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। कोरोना काल में दंत चिकित्सक बहुत अधिक प्रभावित रहे क्योंकि संक्रमण का 100% संभावना थी। ऐसे ही न केवल कोरोना बल्कि और ऐसी संक्रमणकारी बीमारी बड़ी आसानी से दंत चिकित्सक या मरीज की अनदेखी में फैल सकती है। संक्रमण टीबी का, एचआईवी का, हेपेटाइटिस का, साधारण इन्फ्लुएंजा आदि कई बीमारी हैं। ऐसे में डॉक्टर एवं मरीज ये सुनिश्चित करें कि क्या क्लिनिक में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट न केवल साफ हों बल्कि ऑटोक्लेव हों। ऑटोक्लेव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समाप्त हो जाते हैं बल्कि उनके स्पोर्स जिसमें क्षमता होती है कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवित रहने की, वो भी मर जाते हैं। अतः कोई भी इलाज करवाने से पहले इस बात की जानकारी पुख्ता कर लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी की बीमारी खांसने और छींकने से निकलने वाले महीन लार के कण में मौजूद बैक्टीरिया से फैलते हैं, ऐसे में दंत चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर ऑटोक्लेव ना हो तो यह संक्रमण फैल सकता है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। ऐसे ही एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए अनुरोध है, मुंह में किसी प्रकार का इलाज कराने से पहले सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो। साथ ही मरीज सुनिश्चित करे कि सुई नई हो, पुरानी या इस्तेमाल की हुई नहीं। दांत निकलवाने के बाद एक्सरे जरूर करवाएं जिससे ये भ्रम ना हो कि दांत पूरा निकला कि नहीं। कई बार छोटा सा दांत का बचा हुआ टुकड़ा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दांत निकलवाने के बाद जो खून का थक्का जमने लगता है निकले हुए दांत की जगह, उसे संभाल कर परिपक्व होने दें। अगर खून का थक्का बोलने, खांसने, कुल्ला करते वक्त निकल जाए तो ड्राई सॉकेट नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो दर्द की दवा भी सही से काम नहीं करती और जो घाव 2-4 दिन में ही सही होने लगता है, अब 15 से 20 दिन या ज़्यादा समय भी लग जाता है। ऐसे में कोई लापरवाही ना करें। दांत निकलवाने के बाद अपना विशेष ध्यान रखें। दांत निकलवाने के बाद अगर खून बंद ना हो तो तुरंत ही कॉटन घाव के ऊपर रखकर दबा दें और 15 मिनट तक दबा कर रखें। अगर

0: फिर भी बहे तो दंत चिकित्सक की सलाह लें। 24 घंटे सिर्फ ठंडा या नॉर्मल खाना ही खाएं। बार बार थूकना या कुल्ला ना करें। सुन्न का इंजेक्शन अगर नीचे के जबड़े में इलाज के लिए दिया है तो जुबान भी सुन्न पड़ जाती है। ऐसे में ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि कई बार दांत में जुबान कट जाती है और सुन्नपन की वजह से उस वक्त तो पता नहीं चलता, पर बाद में जुबान में घाव हो जाता है और बेहद पीड़ा सहना पड़ता है। अतः मुंह में किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो और टांका लगा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टांका ना टूटे। अगर टांका टूट गया तो घाव सूखने में समय लगेगा और बेहद पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह की सर्जरी से पहले मरीज खाना अवश्य खाए। खाली पेट सर्जरी नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि मरीज सिनकोप या बेहोश हो सकता है और सर्जरी के बाद तुरंत कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता, इसलिए मरीज खाली पेट सर्जरी ना करवाएं। ध्यान देने बात यह है कि चूंकि लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो 24 घंटे खाली पेट अनिवार्य है।
1: दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें विषय पर अभी आप डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा, रात 9:30 चर्चा का विषय है और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन और दिन में 12:15 पर सुनिएगा मुकेश मालवीय का गिटार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और रात 8:30 आप सुनेंगे सोनू निषाद के गाए गीत और भजन।

सुबह 10:05 पर वॉयस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का सुनिएगा दूसरा भाग। सुबह 10:30 पर आश्रया द्विवेदी के गाय लोकगीत सुनवाए जाएंगे। दिन में 11 बजे एक ही कलाकार। दिन में 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई अजय शुक्ल से सुनेंगे नीति वचन। और शाम 7:31 पर बोलते नगमे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। प्रतीक्षा करें।

वाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। फिल्मों से भजन में सबसे पहले हम आपको विरुद्ध फिल्म की ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है शंकर महादेवन की, स्वर शंकर महादेवन का और संगीत अजय अतुल का।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर था महेंद्र कपूर का और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। इसी के साथ

और अब अंत में महादेव का गोरखपुर फिल्म में अगम अग्रवाल की आवाज़ में हम आपको ऐश्वर्या शर्मा और शिवाला का लिखा हुआ भजन सुनवा रहे हैं। संगीत अगम अग्रवाल और चेतन प्रजापति का।

इसी के साथ फिल्मों से भजन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी।
2: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
3: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
0: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आचरण सदन की अवमानना है।
4: अयोध्या से राम जन्म भूमि

0: से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
1: वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।

0: उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हो गई।
1: यह बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
2: निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, वाराणसी के लोगों के लिए निश्चित रूप से, लेकिन देश भर के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारनाथ की ये पुरातात्विक महत्व की संपदा, ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और शामली सहित राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी कुछ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है।
3: जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,954,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर का राग ललित में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। द्रुत के बोल हैं जागी तोरे संग और विलंबित के बोल हैं जोगिया मोरे घर आए। तबले पर आपके साथ संगत की श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्रीयुत श्रीकांत वैश्य ने। तो आइए सुने पंडित अजय पोहनकर का राग ललित में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का राग ललित में ख्याल गायन। तबले पर आपके साथ संगत की श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्रीयुत श्रीकांत वैश्य ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल।

0: जरूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
2: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
3: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
4: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन

0: योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यून खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya.

0: खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरां, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना ख़त्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अलावामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर अजम तारक रहमान की जानब से इस साल फरवरी के महीने में अहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेज़बानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोज़ा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोज़ा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है, जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वज़ीरों की मीटिंग्स मुनक़िद होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने 2 अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। वजारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी, जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने, तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तिरा, नीज स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर 2 महीने में एक बार किया जाता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताज़ा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक ये फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में

0: रहियत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि आरबीआई अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब यह होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी MPC अपना गैर जानबदाराना मौकिफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीक़ेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों नीज कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपए पैसे की बहाली में तेजी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी NCC आज नीट UG काउंसिलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतालिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे। काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलेवार ट्यूटोरियल वीडियोज़ जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार MCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीक़ेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुयना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुजाहिरीन ने दावा किया कि तेज़ धूप में भी मुजाहरे की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है और अब तक हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात नहीं की है। मुजाहरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की क्यादत वाली हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इम्तिहानात के दौरान सीटों की फरोख्त का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए भर्ती के अमल का नज्म करने के हुकूमत के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। तलबा ने पेपर लीक और एहतजाज के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज जारी रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार रियासती रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: उत्तर प्रदेश हुकूमत के पहले सप्लीमेंट्री बजट में माली साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहल को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस पहल का वादा किया था। इस फैसले के जरिए रियासत भर की लाखों मुअम्मर ख्वातीन शहरियों को माली तौर पर राहत मिलेगी और वो मजहबी, सामाजिक, खानदानी और सेहत देखभाल से मुतालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफ़र कर सकेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह दिल्ली के बाज़ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में आज उमूमी तौर पर आसमान अब्र आलूद रहेगा और मुतअद्दिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है।

0: आज करेलम में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत गुज़श्ता रोज के मुकाबले कम रहने का इम्कान है। कासरगोड, कन्नौर, वायनाड, कोझिकोड, इदुकी, इरनाकुलम, कोट्टायम, अल्पुया और पट्टनम थट्टा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के बाकी 5 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए भी रियासत के तमाम अजला में बारिश की वार्निंग जारी की गई है। आज सुबह तक रियासत के जनूबी अजला के कई इलाकों में 15 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनक़िद होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन PV सिंधु के खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जीबंदी मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है, जो 5 है। साबिक आलमी चैंपियन और कांसे का तमगा जीत चुके लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स में 14वें नंबर पर, जबकि ध्रुव कपिला और ओलंपिक खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स में 15वें नंबर पर हैं। ताइपे ओपन में खवातीन के सिंगल्स की चैंपियन तन्वी शर्मा और साबिक आलमी नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत समेत भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी आज से जनूबी कोरिया के आसान में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मौसम गर्मा के दौरान सालाना तौर पर अमृत उद्यान इस महीने की 16 तारीख से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग अमृत उद्यान की सैर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। इस दौरान ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और इसमें सुपहर 5 बजे तक दाखिल हुआ जा सकेगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में होने वाले बलदियाती इंतखाबात को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत अपनी खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। वजारत खारजा ने नाम निहाद बलदियाती इंतखाबात को मजहका खेज और दिखावा करार दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खियां इस तरह हैं, यूपी हुकूमत ने असेंबली में 59,000 करोड़ रुपए का जिमनी बजट पेश किया। दारुल हुकूमत का AQI मुसलसल 5वें दिन इत्मीनान बख्श रहा।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत का परचमबरदार जहाज बुहेरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विषय थोड़ा हटके है। विषय है स्क्रीन स्क्रॉल और डोपामाइन। हाथ में फोन है ना, स्क्रॉल कर रहे होंगे शायद, रील शॉर्ट्स स्टोरी एक के बाद एक। क्या आपने कभी सोचा है कि हम घंटों स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं? क्यों फ़ोन दूर रखने पर बेचैनी होती है? क्यों असली ज़िंदगी कभी कभी बोरिंग लगने लगती है? आज हम बात करेंगे स्क्रीन स्क्रॉल और डोपामाइन की, वो केमिकल जो हमारे दिमाग को खुशी का झूठा वादा देता है, हमें खुशी झूठी खुशी का एहसास कराता है। हम समझेंगे कि ये लूप कैसे काम करता है, दिमाग पर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे निकल सकते हैं। जब हम किसी रील्स या शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं तो हर 10 से 15 सेकंड में कुछ नया देखने को मिलता है। डांस, मजाक, गुस्सा, ट्रेंड, खुशी, कुछ भी। हमारे दिमाग को लगातार ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, इससे हर बार हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है। ये वो रसायन है जो हमें खुशी महसूस कराता है, हमें प्रेरित करता है और सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। ये एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक और हार्मोन है जो हमारे मस्तिष्क द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इससे जो हमें खुशी मिलती है वो बहुत छोटी होती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारा जो दिमाग होता है वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है और इसे और चाहिए होता है। और चाहिए को हम डोपामाइन लूप कहते हैं, यानी स्क्रॉल, थोड़ी खुशी, थोड़ा खालीपन और फिर स्क्रॉल। इससे हमारा दिमाग असली चीज़ों से खुश होना भूल जाता है। किताबें पढ़ना, बातें करना, घूमना सब बोरिंग लगने लगता है क्योंकि इन कामों को करने में थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है और खुशी या जो भी भावना है प्रेरणा की या उत्साह की वो धीरे धीरे आती है और स्क्रीन पर यह हमें तुरंत मिल जाती है। इसे वैज्ञानिक लोग पॉपकॉर्न ब्रेन भी कहते हैं। दिमाग इतना सक्रिय रहता है कि शांत बैठना भी मुश्किल हो जाता है।

तो ये गाना सुनकर आप भी खुशी महसूस ज़रूर कर रहे होंगे, और फील गुड जो ये हार्मोन है हमें गुड फील ज़रूर करा रहा होगा। अब बात करते हैं कि लगातार स्क्रॉलिंग के नुकसान क्या हैं। लगातार स्क्रॉलिंग से हमारी एकाग्रता प्रभावित होती है, नींद ख़राब होती है। ये जो नीली रोशनी होती है ना, ये मेलाटोनिन को रोकती है, और ये मेलाटोनिन वो रसायन है जो हमें नींद आने में सहायक होता है। तुलना और एंग्जाइटी इसको बढ़ाती है, असली रिश्तों में दूरी आ जाती है, और सबसे बड़ी बात खुद से जुड़ाव कम हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने का उपाय क्या है? उपाय है, सुबह उठने के बाद शुरू के कुछ घंटे फ़ोन को अपने से दूर रखें, हो सके तो स्विच ऑफ कर दें। फ़ोन को ज़्यादा कलरफुल मोड में ना रखें, उसे ग्रे स्केल मोड में डाल दें। स्क्रॉलिंग टाइम को सीमित कर दें, और आपको ही करना होगा, 20 से 30 मिनट का ये स्क्रॉलिंग टाइम आप अपना बंद कर दें। माफ़ कीजिए, आप इसे बल्कि 20 से 30 मिनट ही रखें, क्योंकि बाकी पूरा दिन तो आपको अपने काम में बिताना ही होगा। और जब स्क्रॉलिंग की इच्छा हो रही हो तो कोई प्रेरणादायक किताब, कोई पसंदीदा संगीत, या अपने दोस्तों से बात करें, व्यायाम करें, टहलने निकल जाएं, शरीर को प्राकृतिक रूप से थोड़ा थकाएं, जिससे नींद भी आए और शरीर ऊर्जावान रहे। हफ्ते में एक दिन बिना ज़रूरत के फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने की आदत बनाएं। श्रोताओं, फ़ोन का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, हाँ फ़ोन को बिना ज़रूरत के इस्तेमाल करना बुरा है। फ़ोन हमारी आवश्यकता के लिए है, ना कि हम उसको उसकी झूठी चकाचौंध के लिए हैं। आज के कार्यक्रम में संदेश सिर्फ यही कि स्क्रॉलिंग हमें खुशी नहीं दे रही, वो केवल डोपामाइन का छोटा छोटा इंजेक्शन दे रही है। अगली बार जब हम फ़ोन उठाएं और स्क्रॉलिंग का मन हो तो सोचें, क्या ये सच में हमारे ज़रूरी है? कहीं हम व्यर्थ में अपना कीमती समय बर्बाद तो नहीं कर रहे? अपना समय बचाइए, अपना ध्यान बचाइए, अपनी असली खुशी, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। स्क्रीन कम, ज़िंदगी ज़्यादा।

श्रोताओं, चलते चलते आपको मौसम से संबंधित थोड़ा टिप भी दे दें। ये जो मॉनसून है ना, जो अपने साथ बारिश लेके आता है, हमें गर्मी से, उमस से बचा रहा है और राहत दे रहा है। ये हम सबको खुशी दे रहा है, सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि बैक्टीरिया और वायरस भी बहुत आनंद लेते हैं इसमें। इससे होता क्या है कि बारिश में जब हम चलते हैं नंगे पैर, और बहुत से लोग तो खुश होकर के भीगने निकल जाते हैं, ऐसे में जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायु के द्वारा, खान पान के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुशी मनाइए, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाइए। विटामिन सी का सेवन इसमें बढ़ा लीजिए, और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनको बढ़ा लीजिए। पानी जो हम पीते हैं, पानी प्यास तो लगती ही है, तो हम कोशिश करें कि हम नॉर्मल पानी ना पी करके गर्म पानी अपने साथ लेके जाएं, जहाँ भी जाएं, और उसे ही इस्तेमाल करें। इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखें। और हाँ, जो बाहर के जो स्ट्रीट फूड्स हैं, जो हम अक्सर इस मौसम में खासकर खाना बहुत पसंद करते हैं, इससे परहेज़ करें, इसे बिल्कुल भी ना खाएं। घर में पानी जो स्टोर करें तो वो ढका होना चाहिए, वो बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए, और जो भी पानी हो उसमें कीटनाशक वगैरह थोड़ा सा डाल देना चाहिए। ये थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो हमें इस मौसम का सुरक्षित तरीके से आनंद लेने में सहायता करेंगे। तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गाना हम आपको बरसात की रात फिल्म से सुनवा रहे हैं। रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत रोशन का, आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की।

और अब क्रिएचर 3D फिल्म में टोनी कक्कड़ का लिखा हुआ और टोनी कक्कड़ का ही संगीतबद्ध किया हुआ गीत हम आपको अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनवा रहे हैं।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब अंत में हम आपको जैसे को तैसा फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना सुनवा रहे हैं। संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगले प्रसारण की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: विगत दिनों दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा मैदान पर 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। 292 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 50 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 342 करोड़ की धनराशि सड़क एवं संपर्क मार्गों का विकास, जल निकासी और नाला निर्माण कार्य, नगर विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं जन सुविधा से संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य सहित जन से जुड़ी स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए

0: वे कहा कि आगरा अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने खंडारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सेवाजी मंडपम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित परिजनों सहित 7.5 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन किया गया है। आगरा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और डॉक्टर MPS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की होटल, इंश्योरेंस, व्हीकल सहित 1 दर्जन से अधिक नामी लिमिटेड कंपनियों द्वारा 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 457 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए हैं उन्हें केवल मिलने वाले इस रोजगार से संतुष्ट नहीं होना है बल्कि इससे बेहतर अवसर के लिए भी प्रयास करना है। उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सेवायोजन कार्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगरा में विगत दिनों खेत बचाओ अभियान, सुपर अल नीनो और सूखे के प्रभाव के तहत बिचपुरी स्थित RBS कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसानों के साथ संवाद और जनपद स्तरीय तिलहन मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, PF कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, बिजी मिनी किट, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तिल के बीजों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर किसानों को लाभान्वित किया गया। बाद में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों को बीज उर्वरक की उपलब्धता कराने के साथ साथ संवाद, प्राकृतिक खेती और किसान जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहाँ भी जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री ने कहा,
1: चढ़ावा में जो चोरी के मामले आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT गठित किया और इस बात को साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा होगा प्रभावशाली वो बख्शा नहीं जाएगा। उस संदर्भ में तुरंत SIT बनी और तत्काल 8 लोगों को के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आई, बरामद भी पैसा हुआ और उनको जेल भी भेजा जाता।
0: विगत दिनों आगरा में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम को सफल बनाने के लिए करीब 62 लाख वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण महाभियान का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। आगरा जनपद में 5,000 से अधिक स्थानों पर 61,80,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिनमें 21 लाख पौधे वन विभाग सहित करीब 41 लाख अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा,
2: वृक्ष जो है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए इनका लगना जरूरी है, इनकी प्रति चेतना जगाना भी जरूरी है। माँ के नाम एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ा कि सिर्फ रोपित ना करें, उसको पोषित भी करें।
0: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं पर्यटन विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है।
3: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
4: केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं स्थित 4 लीफ प्रकाशगंज उज्जैनी बदायूं लखनऊ को नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ बीते दिनों किया। बदायूं ऐशबाग लखनऊ विशेष गाड़ी संख्या 05018 को उज्जैनी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी बदायूं स्टेशन पर 12:15 पर पहुंचेगी और 12:17 पर यहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहेबल्लापुर होते हुए रात 9:10 पर ऐशबाग लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया,
5: बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी और मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला।
4: मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बीते दिनों उप प्रधान

0: चार्य डॉक्टर नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया। अमृत औषधि केंद्र का संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50-90% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनपद की CM डैशबोर्ड पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जनपद स्तरीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैम व मैम बच्चों के सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीनों की उपलब्धता पर बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रवार सैम व मैम बच्चों का कुपोषण प्रबंधन करते हुए पोर्टल पर सुधार की प्रगति करते हुए उनके समक्ष समस्त बाल विकास योजना अधिकारी अपनी अपनी सेक्टरवार और केंद्रवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। उनके संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित कराई जाए और विभाग CM डैशबोर्ड प्रत्येक केंद्र पर समस्त प्रकार की वजन मशीनों की उपलब्धता का विवरण लेकर बैठक में प्रतिभाग करें। साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के फील्ड कार्यों के सफल गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिनों आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और जिला जनगणना हस्त पुस्तिका का निर्माण उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें तथा फील्ड कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DCHB फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रतिदिन प्रगति से जिला जनगणना अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों की सतत समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा भी पोर्टल आधारित दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला जनगणना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन लखनऊ से नामित जनगणना अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान और मंडल प्रभारी जनगणना अभिषेक कनौजिया द्वारा किया गया। कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के दृष्टिगत ADG बरेली जोन बरेली रमेश शर्मा व DIG बरेली जोन बरेली अजय कुमार साहनी ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बदायूं के कछला गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में सेक्टर व जोन बनाते हुए वह मजिस्ट्रेट अधिकारी नामित किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है और CCTV से निगरानी की जा रही है। शिविर के संचालन के लिए भी स्थापना पूर्ण अनुमति लेने सहित अन्य मापदंड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता एवं प्रभावी समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC तथा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देश गान, आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आईना है जिसमें हम अपनी ही छुपी हुई दास्तानों, अधूरी ख्वाहिशों और जज्बातों की धड़कन साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। अफसाना महज एक कहानी नहीं है, कोरे कागज पर स्याही का बिखरना नहीं है, ये तो हमारे आसपास सांस लेती जिंदगी का एक जीता जागता अक्स होता है। तो अफसाने की इस तिलिस्मी दुनिया में आज जिस मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं, वो इंसानी रिश्तों की एक बहुत ही नाजुक, मखमली और अनमोल कड़ी है। एक ऐसा एहसास जिसे वक्त की धूल भी धुंधला नहीं कर पाती। तो आज की इस नशिस्त में उर्दू अदब की एक निहायत मोतबर मुसन्निफ का शाहकार अफसाना मौजूद है, जिसका उनवान है अंगूठी। दरअसल अंगूठी महज सोने या चांदी का छल्ला नहीं है, बल्कि ये वफाओं का अहदनामा, गुजरे हुए जमाने की अमानत और जज्बात का वो समंदर है जो उंगली में ठहर जाता है। तो अफसाना अंगूठी समाद फरमाए। अफसाना निगार हैं जनाब सैयद अहमद हसनैन।
2: चंदर कार के बेहतरीन मिस्त्री थे। जदीद वजह की कोई कार हो या पुराने ज़माने की, हर गाड़ी पर वो हाथ साफ कर चुके थे। वो रहते गांव में थे, लेकिन दुकान और गैरेज 10 किलोमीटर दूर शहर अकबरपुर में थी। एक दिन खड़ी गाड़ी चेक करके चंदर ने बोनट बंद किया तो देखा कि सफ़ेद रंग की एक कार चंदर के करीब आकर रुकी। काले लिबास में उतरते शख्स

को पहचान कर चंदर ने कहा, नमस्कार चचा, कहें क्या बात है। जीते रहो बेटा, ज़रा इसका इंजन देख लो, चलते चलते अक्सर बंद हो जाती है। चंदर ने दूसरे मिस्त्री से गाड़ी देखने को कहा। सैयद साहब ने उससे पूछा, और सब ठीक ठाक है ना। चचा, दो लड़कों की शादी कर चुके हैं, अब बिटिया की शादी के लिए वर की तलाश है। भगवान चाहेगा तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, सैयद साहब ने कहा। थोड़ी खामोशी के बाद सैयद साहब ने पूछा, क्या तुम बड़ी गाड़ियाँ भी ठीक कर लेते हो। हाँ चचा, कोई भी गाड़ी हो, चंदन ने अपनी महारत जाहिर की। फिर उसने पूछा, चचा आपकी गाड़ी में दो डिब्बे भरे हैं, इसमें क्या है। एक डिब्बे में चाय की प्याली है और दूसरे में प्लेट, ये मजलिस का हिस्सा है। आप लोग तो 7-8 घर हैं, इतना हिस्सा, चंदर ने पूछा। 7 घर हैं तो क्या हुआ, 40 घर सुन्नी भाई भी तो हैं, सब आते हैं। इसके अलावा सैकड़ों हिंदू भाई भी तो मजलिस में शरीक रहते हैं, सैयद साहब ने बताया। कार ठीक हो गई तो कार में बैठते हुए चंदर से बोले, देखो बिटिया की शादी में बुलाना ज़रूर। हाँ जरूर, चंदर ने हाथ दिलाकर कहा। दिन हो कि रात, हल पर चंदर को अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र लाहक रहती थी। काफ़ी दौड़ धूप के बाद इंद्रमणि साहूकार से फ़ोन पर बात शुरू हुई। उन्हें भी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश थी। सूंदमंद बातें रहीं और तय पाया कि शिव बाबा के मंदिर पर आ जाएं ताकि मज़ीद गुफ्तगु हो जाए। चुनांचे इंद्रमणि इतवार को अपने करीबी रिश्तेदार को लेकर शिव बाबा के मंदिर मुकर्रा वक्त पर पहुंच गए। वो अपने बेटे को भी साथ ले गए थे। वहां इधर उधर देखा, कुछ फासले पर चबूतरे पर 3 लोग बैठे नज़र आए। हो न हो यही चंदर मिस्त्री हो, यही सोचते हुए उसी तरफ बढ़े। जय श्री राम, इंद्रमणि ने कहा। जय श्री राम, क्या आप ही इंद्रमणि हैं, चंदर ने पूछा। हाँ हम ही हैं, ये कहकर दोनों ने हाथ मिलाया। फिर चंदर मिस्त्री ने कहा, आइए इधर बेंच पर बैठते हैं। लड़के को देखकर ये ठान लिया कि अपनी बेटी की शादी करूँगा तो इसी से, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये वर देखने में था भी राजकुमार। उधर इंद्रमणि को चंदर के रखरखाव और सरसरी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो गया था कि पार्टी ज़ोरदार है, किस्मत भी क्या खूब इधर ले आई। जहाँ तक लड़की देखने का सवाल है, मंगनी के रस के दौरान ये मसला भी हल हो जाएगा। लड़की पसंद ना आई तो इनकार कर देंगे, इंद्रमणि सोच रहे थे। दोनों के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श रही। चंदन ने उन लोगों को रुख्सत किया और अपनी कार से घर लौट आए। उन दिनों ख़राब मौसम के बावजूद लगन जोरों पर थी। चुनांचे दिन तारीख मुहूर्त देखकर इंद्रमणि ने मगनी की गरज से चंदन से बात की और दूसरे दिन उनके घर पहुंच गए। चंदन ने दावत का शानदार एहतमाम किया था, सब ने सैर होकर खाया। शुरुआती दौर की बातें जब तय पा चुकी तो चंदन मिस्त्री ने पूछा, एक बात तो बताइए कि बराती कितने लाएंगे। अरे यही कोई 200-250, इंद्रमणि ने कहा। आंधी पानी बरसात के दिन हैं, मौसम विभाग की चेतावनी नहीं सुनी, ऐसे ख़राब मौसम में इतने बराती, चंदर ने कहा। चलिए 150 कर लेते हैं, हमें भी तो अपने बरातियों का ख्याल रखना है। इस तरह इंद्रमणि ने अपनी बात रखी, फिर धोती संभाली और चंदर के कंधे पर हाक रखते हुए राजदाराना अंदाज में बोले, भाई ज़रा इधर आओ, कुछ अलग से बातें हो जाएं। ये सुनकर चंदन मिस्त्री के कान खड़े हो गए। बताएं श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सामान्य रूप से जो दहेज लोग अपनी बेटी को देते हैं वो तो आप देंगे ही, ये भी बता दूं कि मेरे लड़के को अच्छी मोटरसाइकिल पसंद है। दूसरी बात ये कि शादी से पहले मुझे 1,00,000 रुपये नकद चाहिए, तभी मैं इस मंगनी को पक्की समझूंगा, इंद्रमणि ने बड़े बेबाक अंदाज में कहा। मोटरसाइकिल तो मैं यूं भी दे रहा था।

लेकिन 1 लाख रुपया नकद देना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। इसमें कुछ, चंदन ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं। इंद्रमणि ने अड़ियल रवैया अपनाया। चंदन ने दोबारा विनती की, मगर बेसुध, ये तो बड़ा लालची है, क्यों ना इसे बेइज्जत करके मंगनी ही तोड़ दी जाए। फिर लड़के की शक्ल और माल दौलत का ख्याल आया, और ये भी कि लड़का अकेला है, तो चंदन ने इंद्रमणि की शर्त मंजूर कर ली। सारी बातें जब तय पा गईं और शादी की तारीख को 1 महीना रह गया, तो चंदन ने लड़के के बारे में छानबीन शुरू की। और ये जानकर कि लड़का हाई स्कूल फेल है, चंदमणि को बड़ा गुस्सा आया। हद है, इसे बीए पास बताया गया था। चंदन के जहन में कई बातें आईं और गईं। गुस्सा कम हुआ तो चंदन ने दोबारा गौर किया, तो कुछ इत्मीनान सा हुआ कि लड़का हाई स्कूल है तो क्या हुआ, जगह जायदाद और दौलत की कोई कमी नहीं, और सोने में सुहागा लड़का इकलौता है। चंदन ने कोई उज्र नहीं किया। शादी से 1 महीना कब्ल इंद्रमणि का फोन आया, भाई एक बात कहना भूल गया था, उसे भी समझ लीजिए। बताएं क्या बात है। चंदन ने समझ लिया कि कोई नई फरमाइश होगी। मेरे रुपेश को सोने की अंगूठी और गले में जंजीर पहनने का शौक है। इसे देखिएगा, अंगूठी 2 तोले से कम की ना हो। इंद्रमणि बेझिझक होकर कहा, वर के लिए 2 तोले की अंगूठी? इंद्रमणि जी क्या कह रहे हैं? चंदन मिस्त्री ने परेशान होकर कहा, हाँ श्रीमन, हमारे कुल में पहनी जाती है। अच्छा तो ठीक है, कहा, और दिल में सोचा, चलो मैंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चंदर के जवाब से इंद्रमणि मुतमईन नजर आए, और 1 लाख रुपये तोला सोने की बढ़ती हुई कीमत उन्हें फरहत बख्श लगी। आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई। बारात बड़ी धूमधाम बाजे गाजे के साथ आई, और मंडप की रौनक दुबाला हो गई। शादी की रसूमात मुकम्मल होते ही बाराती खाने पर टूट पड़े। नॉनवेज दूसरे शामियाने में था, जहाँ ज़्यादा भीड़ थी। इतने में इंद्रमणि ने चंदर के शाने पर हाथ रखा, तो चंदर बोले, मैं आपको ही तलाश कर रहा था, ये लीजिए आपकी अमानत। 1 लाख की गड्डी जब चंदन ने इंद्रमणि को थमाई, तो उनकी बाँछें खिल गईं। मगर अंगूठी का दीदार अभी बाकी था। अंगूठी भी चंदर साथ ही दे सकता था, इंद्रमणि सोच रहे थे। मेज पर मिठाई, केक, दालमोट और सूखे मेवे की प्लेटें लगी हुई थीं, मगर इंद्रमणि के दिमाग में सोने की अंगूठी घूम रही थी। कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए एक तरफ अलग तलग खड़े रहे, ताकि लेन देन तन्हाई में हो। जब इंद्रमणि के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो चंदर के करीब जाकर बड़े बेतुके अंदाज में बोले, ज़रा वो अंगूठी तो लाइए। चंदर मिस्त्री ने तमाम लोगों की मौजूदगी में ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया, भाइयों देखो, शादी तो हो चुकी, अब इंद्रमणि जी लड़के के पिता वर के लिए 2 तोले की सोने की अंगूठी की मांग कर रहे हैं। भला 2 तोले की अंगूठी भी कोई मर्द पहनता है? परंतु ये कहते हैं कि उनके कुल में पहनी जाती है, तो ठीक है, मैं उनके घर परिवार में चल कर देखना चाहता हूँ, मगर अंगूठी पुरानी चाहिए। नहीं, जब तक मैं ना लौटूं, बारात यहीं इसी मंडप में रुकी रहेगी, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, सर पर बार नहीं। इन बातों को सुनकर इंद्रमणि के होश भागता हो गए, एक झटका सा लगा और सर चकरा गया। उनके समझ में कुछ ना आया कि क्या करें। मंडप में खड़े लोगों में चमगोइयाँ शुरू हो गईं। चंदर फिर मुखातिब हुए, मैं समझता हूँ कि इंद्रमणि जी अंगूठी दिखाने की पोजीशन में नहीं हैं, तो अब मैं उनकी मुश्किल आसान किए देता हूँ। इंद्रमणि जी ने बताया था कि उनका बेटा बीए पास है। अगर ये सच है, तो बीए क्या अपने लड़के का हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट ही दिखा दें, तो हम उनको 2 तोले की अंगूठी देने को तैयार हैं। इंद्रमणि बेबस और

0: मजबूर खड़े रहे। उनका सर शर्म से झुक गया था। बेटे ने सवालिया निगाहों से अपने बाप को देखा और कहा, पिताजी आपने ये क्या किया?
1: अभी आप अफसाना अंगूठी समाध फरमा रहे थे। अफसाना निगार थे जनाब सैयद अहमद हसनैन। तो सामिन, अफसाना अंगूठी तो मुकम्मल हो गया, मगर एहसासों का सफर कभी खत्म नहीं होता। कहानी जहां अपने घुटने टेक देती है, शायरी वहां से उंगली पकड़कर आगे ले जाती है। तो अब इस महफिल में वो लम्हा आ गया है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। इन खामोशी को सुर और साज देने आ रहे हैं हमारी अदबी दुनिया के एक चमकते हुए सितारे, एक बेहतरीन शायर। उनके लफ्जों का जादू जब बिखरेगा तो यकीनन आपके दिल के तारों को छू जाएगा। तो बिला ताखीर मैं सीधे आपको जोड़ती हूँ आज के खास कलाम से, खुद शायर की आवाज में। कलामे शायर हैं डॉक्टर अनुज नागेंद्र।
2: एक गज़ल का मतलब पेशे खिदमत है कि गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है। गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है, और आप कह रहे हैं चमन में बहार है। गुंचा तो है ही, गुल भी यहाँ अश्कबार है, और आप कह रहे हैं चमन में बहार है। अब तक ज़रा भी जिससे तबीयत न मिल सकी, अब तक ज़रा भी जिससे तबीयत न मिल सकी, उसका भी दोस्तों में हमारे शुमार है, उसका भी दोस्तों में हमारे शुमार है। गज़ल का शेर कि जब बेकरार मैं था तो उसको करार था, जब बेकरार मैं था तो उसको करार था, मुझको करार आया तो वो बेकरार है, मुझको करार आया तो वो बेकरार है। और मुझको फरेब दे के बहुत मुतमईन है वो, मुझको फरेब दे के बहुत मुतमईन है वो, उसकी इसी अदा पे तो ये दिल निसार है, उसकी इसी अदा पे तो ये दिल निसार है। और एक मतला दो शेर ये भी सुन ले कि आँख सावन का महीना कर गए, आँख सावन का महीना कर गए, मुझको कागज़ का सफीना कर गए। आँख सावन का महीना कर गए, मुझको कागज़ का सफीना कर गए। लौट जाते हैं रफूगर सब के सब, लौट जाते हैं रफूगर सब के सब, इस तरह वो चाक सीना कर गए, इस तरह वो चाक सीना कर गए। फंस गई है जान मेरे जिस्म में, फंस गई है जान मेरे जिस्म में, सख्त मुश्किल मेरा जीना कर गए, सख्त मुश्किल मेरा जीना कर गए। इस कदर मुझको तराशा आपने, इस कदर मुझको तराशा आपने, एक पत्थर को नगीना कर गए। भूल कर मेरी वो सारी नेकियां, भूल कर मेरी वो सारी नेकियां, खून को मेरे पसीना कर गए, खून को मेरे पसीना कर गए। एक मतलब ये भी देखें कि जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई। जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई, और बात हक कहने की ऐसी लत लगी, बात हक कहने की ऐसी लत लगी, ये खराबी मेरी जड़ में आ गई, ये खराबी मेरी जड़ में आ गई। और ये शेर बतौर ख़ास की बढ़ते बढ़ते बात इस हद तक बढ़ी, बढ़ते बढ़ते बात इस हद तक बढ़ी, मोच अंदर से रगड़ में आ गई, मोच अंदर से रगड़ में आ गई, और इस कदर उस शख्स को खींचा गया, इस कदर उस शख्स को खींचा गया, एक सख्ती सी रबड़ में आ गई, एक सख्ती सी रबड़ में आ गई। अक्ल ने बदला ठिकाना और फिर, अक्ल ने बदला ठिकाना और फिर, ये खिसक कर सर से धड़ में आ गई। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि उसने पहले हाथ थामा प्यार से, उसने पहले हाथ थामा प्यार से, फिर मेरी गर्दन पकड़ में आ गई। जिंदगी एक दिन अकड़ में आ गई, शायरी की नस पकड़ में आ गई।

0: एक मतला चंद शेर ये भी देखें कि जिंदगी एक जंग का मैदान थी, जिंदगी एक जंग का मैदान थी, आदमी की राह कब आसान थी। जिंदगी एक जंग का मैदान थी, आदमी की राह कब आसान थी, और हर खुशी मेरी गमों से थी घिरी, हर खुशी मेरी गमों से थी घिरी, आंसुओं के घूंट में मुस्कान थी, आंसुओं के घूंट में मुस्कान थी, और मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, और हर ख्वाहिश मेरी चट्टान थी, मुश्किलों के हर तरफ सैलाब थे, और हर ख्वाहिश मेरी चट्टान थी। दोस्तों ये उन दिनों की बात है, फ़िक्र जब मेरी बहुत नादान थी। अरे गज़ल का शेर सुन ले मोहतरम की, एक पगली थी हमारी जीस्त में, एक पगली थी हमारी जीस्त में, जो मेरी हर बात पर कुर्बान थी। फिर से उसमें आज शहनाई बजी, फिर से उसमें आज शहनाई बजी, एक हवेली दिल की जो वीरान थी, एक हवेली दिल की जो वीरान थी।
1: अभी आप महजूज हो रहे थे डॉक्टर अनुज नागेंद्र के कलाम से। और सामिन, इसके साथ ही ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अदबी मौजू, नए ख्यालात और नए लाजवाब कलाम के साथ। तब तक के लिए आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत इन अल्फाजों के साथ कि फूल खिलते और फना होते रहेंगे, फूल खिलते और फना होते रहेंगे, लेकिन खुशबुओं का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: जोश को मिले दिशा।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति

0: से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निषाद के गाए गीत और भजन। सबसे पहले हम आपको गुरु नानक जी का लिखा हुआ ये भजन सुनवा रहे हैं सोनू निषाद के स्वर में।

आप सुन रहे थे सोनू निषाद के स्वर में गीत और भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व

0: बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेनदेन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्र।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग।
3: स्वाद चाहिए दमदार
4: तो लाइए तृप्ति का दम आलू और कचौड़ी मसाला।
3: स्वाद में तृप्ति, नाम में तृप्ति,
4: तृप्ति मसाले।
5: तो श्रोताओं, प्रयागराज के मशहूर उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल और उनके सुपुत्र सिद्धार्थ कुमार जायसवाल जी से हमारी बातचीत का सिलसिला है वो जारी है। तो आइए उनसे पूछते हैं अगला सवाल।
6: अब बहुत सारे लोग आपके अंडर भी काम करते होंगे
7: जी,
6: क्योंकि अगर पूरे अंचल की बात करें तो कोई उस तहसील में होगा आपका, कुछ इस मोहल्ले में होगा, तो सबको एक साथ डायरेक्ट करना, मेन तो जो है वो कस्टमर है, कस्टमर भगवान है, कि उसका सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा है तभी कारोबार बढ़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि जो आपके अंडर में काम करते हैं उनसे थोड़ी कहा सुनी हो गई हो और आपने कहा कि नहीं मैंने ये कहा था और ये हुआ नहीं, तो फिर उस समय कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं?
7: वर्कर को हम भगवान मानते हैं क्योंकि हम उन्हीं की वजह से चल रहे हैं
6: जी।
7: वो अगर काम नहीं कर

0: रहेंगे तो हम लोगों का कुछ नहीं है। तो
1: जी
0: हमारे यहाँ उनके लिए तो खास तवज्जो है, इज्जत देते हैं, कोई मिसबिहेव नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं तो समझा दिया जाता है। तो इससे वो भी हम समझते हैं कि हमारे जो ऑनर हैं थोड़ा हमको वो करते हैं, तो वो भी हमको करते हैं,
2: विश्वास बनाए रखा
0: एक
2: जाता
0: विश्वास
2: है।
0: बना रहता है। कहीं
2: सिद्धार्थ
0: ना
2: जी कुछ
0: कहीं
2: कहना चाह रहे हैं।
3: फैमिली, वो सारे हमारे फैमिली मेंबर्स की जैसे हैं,
1: जी
3: उनको हम ट्रीट भी फैमिली मेंबर्स जैसे ही करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं या कुछ नहीं समझना चाह रहे हैं, तो उसका हम लोग एक कोई विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पुराना आदमी हो या स्टाफ हो या सहयोगी हो जो चला गया हो। जब से मैं बिजनेस में आया हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि 25 साल या 30 साल से सब के सब वही आदमी हैं जो आज भी हैं।
2: तकरीबन कितने लोग होंगे, कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है इस समय?
3: अगर हम लोग ऐसा देखें तो 250 से 300 लोग हमारे साथ जुड़े हुए
2: जुड़े
3: हैं।
2: हुए हैं।
3: कुछ हमारे लिए काम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे, ये जो पूरा परिवार है वो हमारा 300 लोगों का परिवार है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो भी उत्पाद आप बनाते हैं तो शिकायतें भी आती होंगी लोगों
3: जी
1: के? लोग हैं, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ सुधारात्मक चीजें भी बोलेंगे, तो उसको कैसे लेते हैं जब आप तक ये बात पहुंचते हैं कि जी नहीं नहीं नहीं ये हमने इतने पैसे दिए जी, बदले में हमको ये चीज़ वैसी नहीं मिली, तब आप क्या करते हैं? क्या आपकी कोई कमिटी है या आप खुद बैठते हैं, एनालाइज कैसे
2: क्वालिटी
1: करते
2: मेंटेनेंस
1: हैं?
2: के लिए क्या करते हैं आप?
0: क्वालिटी के लिए देखिए, अपने यहाँ तो प्रोसेस है, ये लैब वगैरह है, सारे कुछ है। लेकिन कभी कभी होता है ना, कस्टमर कंप्लेन करता है कि मैंने आपका हल्दी लिया और तो उसमें कलर ज़्यादा आ रहा है।
1: जी
0: तो अब हम लोग परेशान कि हम लोग अच्छे से अच्छा सामान दिए हैं, सब कुछ है, ये क्यों आ रहा है? तो उस पर रिसर्च होता है, क्या बात है। कभी कभी ये लगता है कि हो सकता है कस्टमर ने कोई तेल है, उसने तेल में डाला हल्दी, तेल गड़बड़ है तो हमारी हल्दी पे आ गया। कमी किसी की है और आ रहा है वो चीज़ हल्दी पे, तो उसको समझाते हैं तो और फिर उसको बताया जाता है। उनकी माने जो भी शिकायत दूर किया जाता है, उनको संतुष्ट किया जाता है अपने कस्टमर को कि हम तो गलत हैं नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ है, तो उसको दूर किया जाता है, तो
1: अच्छा,
0: कस्टमर भी
1: लैब
0: समझता
1: में
0: है।
1: भी चीज़ें जाती हैं, टेस्ट होती हैं, बाकायदा उसका मानक बना हुआ है, तो आप खुद भी देखते हैं कि मानक पे वो चीज़ पैकिंग से पहले खरी उतरी या नहीं?
0: जी, केमिस्ट इसके लिए होते हैं, वो जांच वगैरह करते हैं। हम लोगों का ध्यान मेन रॉ मटेरियल में रहता है, परचेजिंग में, कि जो सामान अच्छा से अच्छा खरीदते हैं। देखिए कोई भी चीज़ होता है, सिंगाड़े का आटा होता है,
1: हाँ
0: लोग व्रत लिए खाते हैं, तो हम भी जानते हैं कि हमें उसी से भावना से उनको खिलाया जाए। बाजार में बहुत से मिलावटी सिंगाड़े खड़े खड़े मिलते हैं, उसमें कंकड़ ये सब होता
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: सस्ते मिलते हैं, लेकिन हम उसको नहीं खरीदते। बड़े बड़े साफ सुथरे, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, हमारा कहते हैं आपका बहुत महंगा है। जब
1: जी
0: हम क्वालिटी देंगे तो रेट महंगा होगा ही, सोना है 18 कैरेट 24 कैरेट में फ़र्क है, वही चीज़ हमारे साथ में भी है। तो लोगों को समझ में आया, जो जो समझ गया वो खाता है, जो रेट देखता है वो नहीं खा पाता।
1: रॉ मटेरियल पे भी बात करेंगे अभय जी, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, सुनिए इस गाने को।

0: म्यूजिकल ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अभय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं।
1: सिद्धार्थ जी, जब भी आप कोई काम लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपके सामने एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है कि हमें कम से कम वहां तक पहुंचना है, वहां तक अपनी जो कारवा को है पहुंचाना है। आपके पिताजी ने साइकिल से यहाँ तक का सफर तय किया, फिर 2013-14 में आपने जब संभाला, तब से अब तक आपकी नज़र में लक्ष्य क्या है? आपको इस जो उद्योग है इसको कहाँ तक पहुँचाना है और कितना विस्तार देना है?
2: देखिए, मेरा जो लक्ष्य है वो तो है कि मैं ऑल ओवर इंडिया, प्लस साथ में मैं अपनी साथ जो चल रही है मेरी विरासत, मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको लेके चलूं।
1: क्वालिटी मेंटेन करना
2: चाहता हूं। मुझे क्वालिटी से मतलब कोई भी समझौता नहीं करना,
1: क्वालिटी से कोई कंपैरिजन
2: नहीं है,
1: कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
2: और साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि इंडिया के हर एक व्यक्ति शुद्ध चीज खाए, चाहे वो मेरा खाए या किसी और का खाए, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मार्केट से मिलावट की चीजें हट जानी चाहिए।
0: पिताजी का ऐसा कौन सा गुण या ऐसी कौन सी बात जो आपको बहुत वाइबिंग लगती है, लगता है कि नहीं ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, इनका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है?
2: इनकी ईमानदारी। इनका कहना है कि कम खाओ लेकिन ईमानदार रहो, किसी के साथ ना कभी बेईमानी करनी है, ना किसी का एक रुपया लेना है, ना किसी को देना है, अपने ईमानदारी से रहना है। ये मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है।
0: मुझे लगता है ईमानदारी एक चैन का एहसास कराती होगी ना, कि भाई जो किया जितना किया वो ठीक किया, कम से कम मानसिक उथल पुथल जो होती है
3: जी,
0: उससे बचता है इंसान,
3: मन में शांति रहती है ना, कि हमने जो भी कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आजकल देख रहे हैं बाजार में क्या क्या हो रहा है, दुनिया भर की बीमारी बढ़ रही है, खाने से है सब कुछ, जितने रिलेटेड सब खाने से है, ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड है, चना की दाल है, और क्या क्या उसमें सब मिला, बहुत ज़्यादा मिलावट है। लोग विश्वास नहीं करते कि हम लोग जब परचेजिंग के लिए जाते हैं मंडी में
0: जी,
3: तो लोग हमारे जो व्यापारी हैं तो कहते हैं आप ये क्वालिटी क्यों खरीद रहे हैं, ये वाला खरीदिए
0: जी,
3: जो आप खरीद रहे हैं इस प्रॉफिट कैसे बेचेंगे उसको आप
0: जी।
3: तो हमने कहा वो आप छोड़ दीजिए, वो हमारी चिंता मत करिए, वो माने उनको विश्वास नहीं होता कि हम ये इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम गलाते हैं। ये
0: मतलब आप जो हमारी मुंडेरा मंडी है शहर की, वहाँ पर जाते हैं रॉ मटेरियल डायरेक्ट किसानों से या कहीं गांव से भी लेते होंगे?
3: बाहर से आता है, जहाँ जहाँ भी होता है, जैसे जीरा हो गया ये गुजरात में हो जाए, ऊंझा मंडी है
0: जी जी,
3: तो जो हम
0: डायरेक्टली वहाँ तक जाते हैं,
3: करना पड़ता है
0: जी जी।
3: हल्दी के लिए दुगराला साउथ में जानी पड़ती है, धनिया के लिए रामगंज मंडी है मध्य प्रदेश में, सबका अलग अलग बना हुआ है, तो वहाँ की पैदावार है ना वो, जैसे अपने यहाँ प्रयागराज का अमरूद है ना, तो उसी तरह सभी जगह का वो है। तो सभी जगह का फेमस होता है, सब जगह लौंग इलायची वगैरह केरला से आती है। जो वहाँ पे ट्रेडर्स है उनको विश्वास नहीं होता, कहते आप क्यों खरीदते हैं इसको, आप बंद कर दीजिए अपना व्यापार, वो कहते हैं आप अपना बंद कर दीजिए।
0: मुझे लगता है कि आप गिरने के बाद जितनी बार उठे हैं शायद इसी गुण के कारण ही, क्योंकि लोगों ने आपको मतलब हाथों हाथ लिया भी, उनको यकीन था कि शायद ये सेफ है, सुरक्षित है कंज्यूम करना।
3: और यहाँ की जो जनता है ना, जनता मतलब कि हमारे जो कंज्यूमर हैं, वो एज ए हमारा डॉक्टर का पर्चा नहीं होता है
0: जी,
3: हल्दी है कि नहीं, तो दुकानदार कहता है नहीं है तो वहाँ से नहीं लेंगे, आगे जाके ले लेंगे दूसरे दुकानदार से, वो वाला सामान दीजिए जो हम मांग रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं कस्टमर हमारे।
0: दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते हैं गीत।

0: अच्छा, कैसा लगता है सिद्धार्थ जी, विजय जी, ये जब सुनते हैं कि अच्छा आपकी दुकान पे नहीं है, हम आगे ले लेंगे, तो ये जो एहसास जब आप सुनते होंगे, कुछ तो है।
1: हाँ, तो हमको लगता है ना, हमने जो जिसके पीछे मेहनत किया है, हमारे सफलता मिली है, एक संतोष होता है मन में कि इसका फल जो है मीठा है।
0: फल
1: एक
0: मीठा
1: गर्व
0: है,
1: होता है उसको सुन
0: गर्व
1: के,
0: होता है,
1: अपने प्राउड होता है
0: जो
1: कि हम लोगों ने जो जिस लाइन पे चले, हम लोग जिस मिल
0: चीज
1: ले,
0: हम चाहते थे कि लोग प्योर खाए और वो उन्होंने खाया, उस चीज का हमको बहुत प्राउड फील होता है।
1: जी कस्टमर भी हमारे बहुत हमको वो फोन करके कहते हैं कि आपका ये बहुत अच्छा है ये।
0: अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि दुकानों पे पैक डेट भी जो नियर अबाउट होता है कि भाई मार्च में कोई चीज़
1: हाँ,
0: है
1: एक्सपायरी
0: वो,
1: डेट।
0: हाँ एक्सपायरी डेट, तो क्या आप उस सामान को वापस ले लेते हैं? कई बार दुकानदार कहते हैं कि नहीं जी, अब तो आप ले लो जी कम दाम में, तो आप ऐसा नहीं करते कि नहीं ये भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, अगर एक्सपायरी डेट बहुत करीब है तो हम नहीं देंगे लोगों को?
1: हम लोग देखते हैं कि एक्सपायरी हो रही है डेट, तो उसको वापस ले लेते हैं और उसको हम लोग फिर दोबारा यूज़ नहीं करते, भी बता दें आप, उसको
0: हाँ
1: डैमेज कर दिया
0: उसको
1: जाता
0: डैमेज
1: है,
0: कर दिया जाता है,
1: रीयूज़ नहीं होता उसको।
2: तो विजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आप देश के अलग अलग भागों से मसालों के लिए जो रॉ मटेरियल है
1: जी।
2: खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, आपकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, तो इसके लिए क्या आपने कुछ ऐसा सेक्शन बना रखा है, कुछ लोग कमिटी बना रखी है, कैसे ये चेक करते हैं कि जो आप मटेरियल खरीद रहे हैं, जो सामग्री खरीद रहे हैं, वो आपकी गुणवत्ता को मैच कर रहा है?
1: पहले जब रॉ मटेरियल आता है ना, तो हम लोग उसको चेक करते हैं इसमें क्या कमी है क्या है। मेन होता है सफाई का प्रोसेस, जैसे कोई भी चीज़ लिया गया उसको अच्छे कुशल कारीगरों द्वारा उसको एकदम से साफ किया जाता है, उसमें कंकड़ पत्थर जो भी डस्ट वगैरह हटाया जाता है, उसके बाद हाइजीनिक किया जाता है, उसके लिए मशीनें अलग हैं, उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो, और जो पिसाई भी होती है वो स्टेनलेस स्टील की मशीन से होती है, जिसमें उसकी गुणवत्ता, मारे माल पिसने के बाद उसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहे, माल जैसे कहते हैं जले ना, आप गेहूँ पिसाते तो जलता है ना आटा, कम हो जाता है, तो इसी तरह मसाला भी जलता है। मान लीजिए हल्दी है, तो हल्दी बहुत फायदा करती है, उसको पीसने के बाद जल गया तो कम हो जाएगा उसका पावर, तो कोशिश ये रहती है वो उसी तरह रहे, 100% उसका वो रहे,
0: जी
1: ये
0: जी
1: सब।
0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी और विजय जी और सिद्धार्थ जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों
2: अगले अंक में शुक्रवार सुबह 10:05 पर
0: सुनते रहिए वॉइस ऑफ प्रयाग।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम।
1: स्वाद चाहिए दमदार
2: तो लाइए तृप्ति का दम आलू और कचौड़ी मसाला।
1: स्वाद में तृप्ति, नाम में तृप्ति,
2: तृप्ति मसाले।
0: लीजिए अब सुनिए लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आश्रया द्विवेदी के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको ये देवी गीत सुनवा रहे हैं आश्रया द्विवेदी के स्वर में।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे आश्रया द्विवेदी के गाए लोकगीत। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे कि आज किस कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं।
3: तेरे नाम की।
2: जी हाँ श्रोताओं, आज के हमारे कलाकार हैं फिल्म अभिनेत्री काजोल। फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी मुस्कान पर्दे पर आते ही कहानी में जान डाल देती है। कुछ कलाकार अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने सहज अभिनय, जीवंत अभिव्यक्ति और भावनाओं को पूरी सच्चाई से जी लेने की कला के चलते दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। और ऐसा ही कुछ था काजोल के साथ।

5 अगस्त 1974 को मुंबई में जन्मी काजोल एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां अभिनय मनोविरासत में मिला हो। उनके माँ तनुजा हिंदी और मराठी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जबकि उनके पिता सोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। काजोल की नानी शोभना समर्थ, जो कि अपने समय की चर्चित अभिनेत्री थी, और उनकी मौसी नूतन भारतीय सिनेमा की एक लेजेंड कलाकारों में से गिनी जाती।

इतना इंट्रोडक्शन काफी है यह बताने के लिए कि अभिनय विरासत में ही नहीं मिला था बल्कि काजोल के खून में समाया हुआ था। और यह सब कुछ देखने को मिलता है जब हम उनकी फिल्में देखते हैं। यानी अभिनय उनके परिवार की पहचान रहा, लेकिन काजोल ने अपनी एक अलग शैली भी डेवलप की, अलग पहचान भी बनाई। उन्होंने मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, अभिनय का अवसर मिला तो पढ़ाई बीच में छोड़कर फिल्मों की ओर कदम बढ़ा दिए। सिर्फ 19 साल की उम्र रही होगी जब उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की, और जो शुरुआत की तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

श्रोतो, काजोल ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी। हालांकि ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन उनका टैलेंट सबको नजर आया। इसके बाद आई फिल्म बाजीगर, जिसमें उनके साथ थे शाहरुख खान, और यहीं से शुरू हुई हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी। जी हाँ, शाहरुख और काजोल की जोड़ी। उसके बाद करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और न जाने कितनी फिल्में, जिनमें कि इन दोनों जोड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। काजोल की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वे हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाती थी, चाहे चुलबुली लड़की हो या फिर गंभीर पत्नी या फिर भावुक माँ हो या फिर आगे चल के आप देखें तो एक मजबूत महिला। हर भूमिका में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी।

शुदा काजोल ने अपने करियर में रोमांटिक फिल्मों के अलावा कई ऐसी भूमिकाएं निभाई जो चुनौतीपूर्ण थी। फिल्म आई थी गुप्त, जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने दर्शकों को चौंका दिया था। फना की अगर बात करें तो उसमें उनका अभिनय बहुत इमोशनल रहा। यू मी और हम, माय नेम इज़ खान, दिलवाले, तन्हाजी और सलाम वेंकी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का अलग रंग दिखाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो है नेचुरल एक्टिंग। वे संवादों से ज़्यादा अपनी आंखों और चेहरे के भावों से कहानी कह देती हैं। यही कारण है कि आज भी नई जनरेशन की अभिनेत्रियाँ उन्हें आइडियल मानती हैं, और यही रीज़न है कि बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने काजोल को कॉपी करने की कोशिश की, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने काजोल को आत्मसात करने की कोशिश की, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने खुद में काजोल को महसूस किया। क्या करूं?

श्रोताओं, काजोल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 24 फरवरी 1999 की तारीख जब उन्होंने अभिनेता अजय देवगन से शादी की। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टिव जोड़ियों में से मानी जाती है। उनके दो बच्चे हैं। परिवार और फिल्मों

के बीच एक बैलेंस बना के रखना ये काजोल की खासियत में से एक है। सोशल वर्क की बात की जाए तो काजोल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और बच्चों से जुड़े कई सब्जेक्ट्स पर वो अपनी भागीदारी निभाती रहती हैं। अपनी ज़िंदगी में कई पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया, जिनमें से फिल्मफेयर अवार्ड्स उन्हें मिले और वे हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से शामिल रहीं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। उनकी कई फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से गिनी जाती हैं।

श्रोतों, काजोल केवल एक सफल अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक ऐसी पहचान है जिन्होंने ये साबित किया कि अभिनय में सच्चाई और सहजता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 3 दशकों से अधिक लंबे अपने सफर में उन्होंने हर पीढ़ी के दर्शकों का प्यार पाया और आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उनकी मुस्कान, उनकी ऊर्जा, उनका अभिनय और आने वाली पीढ़ियां उनको ऐसे ही याद करती रहें, यही दुआ हम भी करते हैं। इसी शुभकामना के साथ एक कलाकार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अतुल यादव को, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सभी सुनने वालों को एक बार फिर अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मौसम कुछ अलग है। हवा में मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू भी है और आसमान जैसे दिल खोल कर बरस रहा है। ये सिर्फ बारिश नहीं है श्रोताओं, ये तो यादों की फुहार है। कभी बचपन की कागज की नाव तो कभी पहली मोहब्बत का भीगा हुआ खत। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लेकर के आया है वो भावुक सपल, ये हमारा कार्यक्रम। बारिश का पहला एहसास तो याद हो गई, हमें बचपन में ही हो जाता है, जब मम्मी चिल्लाती थी भीग मत जाना सर्दी हो जाएगी, और हम कहते थे, क्या करते थे हम, बस छत से टपकते पानी में उछल उछल कर नाचते थे। गली में पानी भर जाता था, नुक्कड़ पे जब पानी का हमें कोई गहरा गड्ढा दिखाई पड़ता था तो छत से कूद कर न जाने कैसे यूं महसूस कर लेते थे कि लगता था सारी कायनात आज हमारे कदमों में आ गई हो, और वही पानी हमारी दुनिया बन जाता था। जी हाँ, कागज के नाव और उसकी रेस, कौन जीता कौन हारा कोई फर्क नहीं पड़ता था।

0: AIR @90। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से

सही कुछ हमारे स्टूडियो के बाहर का जो नज़ारा है वो हमें यहाँ से बैठे बैठे न जाने कि मदहोश किए जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना कि बारिश सिर्फ पानी नहीं होता, या यूं कह लें कि बारिश सिर्फ पानी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तव में यादों का मौसम है। कितने ही लोग इस मौसम में अपने पुराने किस्सों में लौट जाते हैं। कोई पहली मुलाकात याद करता है तो कोई आखिरी मुलाकात। बारिश में वो चाय की टपरी, भीगी हुई सड़कें और किसी का इंतज़ार करती खिड़की। कभी कभी बारिश हमें अंदर तक भिगा देती है, जहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है।

ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। श्रोताओं, बारिश हमें एक बात सिखाती है कि रुकना नहीं है, बहते रहना है। भले ही सहारा नदियों का लेना पड़े, लेकिन रुकना नहीं है। जी हाँ, बारिश की बूंदें आसमान से धरती पर आती हैं, उसके बाद समा जाती हैं धरती में और यूं ही कहीं ना कहीं मिल जाती हैं जाकर भीतर ही भीतर उन नदियों से जो अनवरत धारा प्रवाह बहती रहती हैं। जैसे नदियां बारिश के बाद और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं, और भी ज्यादा हाहाकार मचाती सी दिखाई पड़ती हैं, और भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती सी दिखाई देती हैं, और भी ज्यादा यूं लगता है जैसे गांभीर्य की चादर उन्होंने ओढ़ ली हो। वैसे ही इंसान भी मुश्किलों के बाद और भी गहरा हो जाता है। कभी कभी जिंदगी में भी बारिशें आती हैं, यानी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वही बारिशें हमें कई बार साफ कर जाती हैं, यानी मजबूत बना देती हैं, हमें नया बना देती हैं। तो अगर आपकी भी जिंदगी में आज कोई बारिश यानी तकलीफ है तो परेशान मत होइए, घबराइए बिल्कुल भी मत। वक्त है, निकल जाएगा और आप मजबूत बन के उभरेंगे।

श्रोताओं, बारिश सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि एक एहसास है। कभी आपको बचपन में ले जाती है तो कभी किसी अपने की याद दिलाती है और कभी आपको खुद से मिला देती है। तो अगली बार जब बारिश हो तो बस एक कप चाय लीजिएगा और खुद को थोड़ा सा भीगने दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि होता क्या है कि ये जो बारिश की बूंदें जब हमारी नज़रों के सामने पड़ती हैं और जब कई बार हम उन्हें भीग कर महसूस करते हैं और कई बार जब उन्हें हम दूर बैठ के देखते हैं, तो वो जो एहसास होता है ना, वो न जाने कितनी यादों में हमें लेकर के चले जाता है। और वो जो यादें होती हैं, वो ज़िंदगी में चल रहे न जाने कितने दुखों से, न जाने कितनी तकलीफ़ों से उबार करके ले जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुरानी तकलीफ़ों को भी याद करके इंसान मुस्कुरा देता है।

तो श्रोता, हमारा प्रोग्राम भी आ पहुंचा है अपने आखिरी पड़ाव पर और लगता है बारिश भी अब धीरे धीरे थमने लगी है। बादलों ने अपनी कहानी कह दी, बूंदों ने धरती को जी भर कर भिगो दिया और अब मौसम के चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान लौट आई है। ऐसे में क्यों ना हम भी अपनी उदासी को यहीं पे छोड़ दें और जिंदगी के रंगों में थोड़ा सा मस्ती का रंग घोल दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब माहौल होगा थोड़ा चुलबुला, थोड़ा शरारती और पूरा मस्ती भरा, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे दूसरे सेगमेंट में और आप अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा और बढ़ा लेंगे।

यही तो है जिंदगी, कभी रिमझिम फुहारों की नरमी तो कभी मस्ती से भरपूर धड़कनों की गर्मी। जी हाँ, आज की इस भीगी भीगी सी महफिल में हमने बारिश की खुशबू महसूस की, यादों की नमी भी समेटी और मुस्कुराहटों की धूप भी बटोरी। याद रखिए, मौसम बदलते रहते हैं लेकिन अच्छे एहसास कभी पुराने नहीं होते, इसलिए जब भी बारिश की कोई बूंद आपके चेहरे को छुए तो इस महफिल को, इस प्रोग्राम को, इन गीतों को और हमारी इस मुलाकात को जरूर याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में भी खुशियों की फुहार कभी न थमे, मुझे यानी अतुल यादव को दीजिए इजाजत प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे

0: देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। संसद समीक्षा रात 8 बजे, चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 बजे, और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विधानमंडल समीक्षा हम लखनऊ से रिले करेंगे रात 8:20 पर। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मुकेश मालवीय का गिटार वादन आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 12:15 पर। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश दिन में 12:30 बजे होगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी 1:15 पर होगा, जिसमें निखार के साथ साथ सेहत ज्ञान की बातें होंगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनना मत भूलिएगा दिन में 2:30 बजे।

शादीकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे फिल्मी गानों के कार्यक्रम फिल्म संगीत से। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 बजे ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में अजय कुमार शुक्ल का नीति वचन सुनेंगे, साथ ही आनंद लेंगे आश्रया द्विवेदी के गाए लोकगीतों का। 7:00 में आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सोनू निषाद, श्री दीपक कुमार साव, श्री महेश्वर दयाल, सुनील मिश्र, जयंतो बोस और शिवम श्रीवास्तव।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना देते हैं। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, दीपा रानी उर्फ गुड़िया, उम्र 27 वर्ष, कद औसत है, मजबूत शरीर, सांवला रंग और चेहरा लंबा है। ये 26 जून 2026 को ग्राम कांदीपुर से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9415962984। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9415962984। अगली सूचना इस प्रकार है, रविचंद्र उर्फ भीम, पुत्र रामाश्रय उर्फ पुत्तन, उम्र करीब 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये 18 जून 2026 को दिन में 1 बजे के आसपास कुंभौर असरही से लापता हो गए, जो कि लालगंज थाने के अंतर्गत आता है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 8140903356। इसके अलावा 9156463693। और आज की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, शुभम पटेल, पुत्र चंद्रेश पटेल, उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, लंबा चेहरा, इकहरा मजबूत शरीर, इन्होंने गुलाबी शर्ट और काला पैंट और साथ ही हवाई चप्पल पहना हुआ है। ये 7 जून 2026 को 3 बजे के आसपास ग्राम ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 7570883096। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 7570883096। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश मालवीय का राग शुद्ध सारंग में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुकेश मालवीय का राग शुद्ध सारंग में गिटार वादन। हम आप आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झूंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी जी महेंद्र जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: मैडम? बहू बेगम का गाना सुनना है, सावन का महीना आ गया तो सावन के झूले पड़ गए झूले, सावन ऋतु आई।
0: पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे
1: मैडम, इसी का गाना सुनना।
0: पुराना गाना, बहुत ही अच्छा गाना है।
1: हाँ मैडम गाने बहुत बढ़िया, सावन के महीने में गावन गाना सावन का ही अच्छा
0: जी,
1: लगता
0: जी,
1: है।
0: और सावन और झूले का तो पुराना नाता है।
1: हाँ पुराना नाता है मैडम। जो है
0: जी,
1: नाम भी लेने पड़ा
0: हाँ,
1: मैडम जो
0: ले
1: है,
0: लीजिए ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीक्षा कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा।
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बहू बेगम फिल्म का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: और मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज फेसबुक चल रहा है। हम सब श्रोताओं का मन पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम पे मैं हूँ राजेंद्र। अपनी मन पसंदीदा फरमाइश को लेकर गोतनी कुंडा प्रसाद वर्ते में नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन और इसके बोल ही मेघारे मेघारे मत परदेश
0: जा रहे। तो भाई राजेंद्र जी ने पसंद किया है प्यासा सावन फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आरणी मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार। दीदी आप कैसी हैं?
0: नमस्कार जी। नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चांदनी
0: जी,
1: और इसमें एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में ये बहुत ही अच्छा गाना चांदनी फिल्म से है।
1: जी जी,
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं, सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना खेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से मैडम जी। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके प्रोग्राम में जुड़ा हूँ मैडम। मैं
0: जी, लोकेंद्र जी हमारे नियमित श्रोता हैं, थोड़े थोड़े अंतराल पर फोन जरूर करते रहते हैं। तो लोकेंद्र जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है मैडम जी मुझे, ये बारिश का दौर चल रहा है अभी, तो
0: जी
1: गाना सुनने की इच्छा है फिल्म अनजाना, और
0: जी
1: इसके गीत के बोले रिम झिम के गीत गाए सावन के।
0: क्या बात है, मोहम्मद रफी लता जी की आवाज है।
1: जी, कुछ दोस्त भी हैं हमारे, प्रेम सिंह जी हैं, शारदा प्रसाद जी हैं, गौतम जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रही हूँ, जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम जीत फिल्म का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
0: तो आपकी पसंद का रोशनी जी एक गाना सुनवाया जाए।
1: मैम कुछ नाम मेरा चाहिए।
0: हाँ ले लीजिए नाम।
1: दहला मैं प्रतापगढ़ से। मेरी जी शांति दीदी हैं, सुनील दीदी हैं, उनकी दो बेटी हैं आशीष सागर, आदि सागर, और पूरे बेदमत हैं प्रीति दीदी हैं, शेख दीदी हैं, और हमारे छोटे भाई बहन हैं सूरज कुमार हैं, संदीप कुमार हैं, मंदीप कुमार हैं, सुशांत कुमार हैं, छोटी बहन है पूजा, और मम्मी हैं, पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, आप हैं, सभी सुनने वाले श्रोता मित्र हैं, और खास उनके लिए जो जिनकी कॉल आज नहीं लगी है।
0: बहुत लंबी लिस्ट है रोशनी जी ने, सभी का नाम लगभग ले लिया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गाना।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
2: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने

0: कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियार करदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने के बाद ही किया जाएगा। इजाज़त देने से पहले अफसर को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि उस शख्स की तरफ से फराहम करदा मालूमात दुरुस्त हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा के बाद पैदाइश या मौत की इत्तला दी जाती है तो उसका इंदराज सिर्फ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ही किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 50वीं सालगिरह के मौके पर डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर रियासत के तमाम 75 अजला में एक रोज़ा ज़िला सतह के डेयरी कन्क्लेव 2026 का अहतमाम करेंगी। तकरीब में माहिरीन मुख्तलिफ मौजूआत पर तकनीकी और अमली मालूमात फराहम करेंगे। सियाहत और सकाफत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक रोज़ा दौरे पर कल वाराणसी पहुँचे। जनाब शेखावत ने यूनेस्को के ज़रिए सारनाथ को आलमी सकाफती विरासत में शामिल किए जाने के बाद सारनाथ में मजहबी स्तूप समेत आसार कदीमा के खंडरात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि आलमी सकाफती विरासत का दर्जा मिलने के बाद हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों और बौद्ध मत के अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: धागे से जो दिल को बांध ले, वही तो एक सच्चा संवाद है। जो खामोशी की जुबान को भी समझ सके, वही संबंधों की असली पहचान है।
1: तो चलिए बैठे जरा, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, इस शोर शराबे की दुनिया में थोड़ा सूफी सुकून बने। नाराजगी की दीवारें शब्दों से ही ढहेंगी, जब रूह से रूह बिना किसी पर्दे के बातें करेंगी। इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अनामिका
0: और मैं संगीता बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी साथियों का, सभी श्रोताओं का आपके अपने चहेते कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
1: तो आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज और सुधीर श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि अब रेडियो का वॉल्यूम कर लीजिए थोड़ा और तेज, और ट्यून कीजिए 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप को, क्योंकि अब बिना किसी रुकावट के कहीं पर भी बैठे संगीता जी, आप अपने यानी हमारे सभी सुधीर श्रोता, हमारी सभी सखियां कोई भी काम करते समय अपने सारे पसंदीदा कार्यक्रम वो बड़े आसानी से सुन सकती हैं। और पता है आपको अभी ये क्या कर रही है भाई? अभी जो समय हो चुका है वो क्या है, वो इस समय का जो समय होता है वो इतना थका थका सा हो जाता है ना, 1-1.5 बजे के आसपास आते आते हम इतने थक से जाते हैं कि लगता है कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें फिर से रिफ्रेश कर दे। आपका क्या सोचना है?
0: बिल्कुल, रिफ्रेश तो होना ही होता है, क्योंकि देखो रिफ्रेश करने के लिए हमारा कार्यक्रम है गृह लक्ष्मी, हमारी सखियों के लिए है ना। और देखो जब अनामिका जब बात होती है हमारे कार्यक्रम की, तो हम सखियों के लिए बहुत कुछ लाते हैं है ना।
1: और मुझे लगता है बस एक ये थोड़ी सी बात कह करके वो जो लाने वाली बात आपने कही है ना, वो उनके तक पहुंचा दी जाती है। तो भाई उस बात को पहुंचाने से पहले ये बात भी आप तक जरूर पहुंचा दे कि अल्फाजों के पैर तो भले नहीं होते, अल्फाजों के पैर भले नहीं होते मगर ये दूर निकल जाते हैं, और देखिए कैसे ये आपके दिलों को छू जाते हैं।

0: भाई, मौसम की जो बारिश है ना, उसके साथ मुझे कुछ याद आया है।
1: जैसे क्या याद आ गया?
0: जैसे जैसे रिमझिम फुहारों की मधुर रुझुन, भीगी मिट्टी की सोंधी सोंधी महक, दूर क्षितिज तक फैली हरियाली, पेड़ों की डालियों पर झूमते पत्ते, मोर का आनंदमय नृत्य, कोयल की मधुर तान और मंद मंद बहती शीतल पुरवाई। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने हृदय के सारे रंग आज धरती पर बिखेर दिए हो।
1: आहा, मन आनंदित हो गया। और सच कहें तो ये ऋतु वो ऋतु है जो सूखी धरती में भी हरियाली भर देती है, थके मन में नई उमंग जगा देती है और

0: बिखरते हुए रिश्तों को भी प्रेम, अपनापन और विश्वास की नई नमी से भिगो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और संगीता जी, आज हम अपनी सखियों से, अपने सभी श्रोताओं से जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बड़ा ही संजीदा है, या यूं कहें कि बड़े ही नाजुक डोर की बात हम अपने सभी श्रोताओं, अपने सभी सखियों से कर रहे हैं। जहाँ कभी नोकझोंक है तो कभी खामोशी और चुप्पी, तो कहीं किसी पल मौन भी अभिव्यंजित हो उठती है। वो अज्ञेय जी की पंक्तियां है ना कि मौन भी अभिव्यंजना है, मेरे हृदय को बहुत छू जाती हैं। और वो कहते हैं ना कि जो खामोशी की जुबान को भी समझ ले वही आपसी संबंधों की असली मिठास होती है।
1: और अनामिका, ये मिठास तब और बढ़ जाती है जब हम आपसी संबंधों में संवाद को घोलते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते के लिए आपसी संवाद का बरकरार रहना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी खामोशी और इस चुप्पी को साधने के लिए शब्द बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जो हमारे रिश्ते में भावनात्मक रूप से अपना अहम रोल अदा करते हैं। और शब्द महज कुछ अक्षरों में पिरोए कोई वाक्यांश नहीं, बल्कि ये हमारे अंतर्मन की वो चेतना है, वो आवाज़ हैं जो हमारी भावना और विचारों को जीवंत बनाए रखते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रचना क्या है, तो बहुत सीधा सा प्यारा सा जवाब है, हमारे आपसी संबंध।
0: शब्द वाकई केवल अक्षरों का मेल नहीं संगीता जी, बल्कि ये आत्मा का वो स्पंदन है जो संबंधों को सांसें देने वाला एक अहम डोर की भूमिका निभाता है। और हमारे आपसी संबंधों को जोड़ने, उन्हें थामे रखने वाली जो डोर है ना, उसी को हम संवाद कहते हैं। क्योंकि जब संवाद में रूहानियत घुलती है तो शब्द स्वतः इबादत बन जाते हैं।
1: बिल्कुल अनामिका। और रिश्ते कांच की बर्तन की तरह नाजुक होते हैं, उन्हें सहेज कर रखने के लिए मीठे शब्दों और निरंतर संवाद की जरूरत होती है।
0: शब्दों में वाकई संगीता जी एक असीम शक्ति होती है जो किसी घाव पर मरहम का काम भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो गहरे जख्म की तरह चुभ भी सकते हैं। इसलिए सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। जब हम किसी से प्यार, आदर और सहानुभूति के शब्द बोलते हैं ना, तो सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। एक छोटा सा थैंक यू, या कोई बात नहीं मैं हूं ना,
1: या फिर आप घर से निकल रहे हैं, घर से जाते समय अपने बड़ों को कहिए मैं शाम को मिलता हूँ या मिलती हूँ। अपने बच्चों से कहें आते समय कैसा रहा आज का दिन। जानती हो अनामिका, ये संवाद जब होते हैं ना, आपसी संवाद, तो रिश्ते बहुत ही मजबूत बनते हैं।
0: और ऐसे शब्द संगीता जी ये भी है कि जैसे कभी हमारा मनोबल बहुत टूटा सा होता है ना, या हम बहुत थके थके हारे हारे से अपने मन को पाते हैं, तो ये सारी बातें ना, एक छोटा छोटा सा मैजिकल वर्ड्स भी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे टूटे हुए हौसले को फिर से वापस ले आता है।
1: और वहीं दूसरी ओर बिना सोचे समझे बोले गए शब्द जो मजबूत से मजबूत रिश्ते में भी दरार डाल देते हैं, इसलिए अपनी बात को सही शब्दों में ही पिरोकर कहने का प्रयास करें, जो अपने आप में एक अनूठी कला है।
0: और एक बात और हमेशा याद रखिए कि संवाद रिश्तों की धड़कन है। जब तक दो लोगों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, तब तक गलतफहमियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। कई बार हम नाराज होकर चुप हो जाते हैं, और यही मौन, यही खामोशी धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं। और जब आपसी संवाद टूटता है ना, तब मन में अनेकों धारणाएं बनने लगती हैं जो अक्सर सही नहीं होती और सच भी नहीं है। याद रखिए कि संवाद केवल दो लोगों के बीच की बातचीत ही नहीं है संगीता जी, ये दो आत्माओं का एक दूसरे में विलीन हो जाना भी कहा जा सकता है। जब रिश्तों में खामोशी की बर्फ जमने लगे तो संवाद की गर्माहट ही उसे पिघला सकती है।
1: सही कहा अनामिका आपने, क्योंकि रिश्ते जब आत्मा की धरातल पर जुड़ते हैं तो वहाँ शब्दों का वजन बदल जाता है, वहाँ औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मिक गहराई होती है। इन शब्दों में वो रूहानी ताकत है जो किसी बिखरती हुई जिंदगी को समेट सकती है। एक सच्चा और प्रेम से भरा

0: आज शब्द किसी भी अंतर मन में बहुत से जो बुझते हुए दिए होते हैं ना नामिका, उसको भी जला सकता है।
1: इसलिए हमें अपने इस खूबसूरत आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जानती हैं क्या, सबसे पहले तो सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि संवाद केवल अपनी बात कहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की बात को भी पूरी संवेदनशीलता से सुनना भी होता है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम उन्हें ये एहसास दिला पाते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनका हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है।
0: और दूसरा, हमें अहंकार को दूर रखना होगा। रिश्तों में मैं सही हूँ इसके बजाय हमारा रिश्ता सही रहना चाहिए, ये भावना ज़रूरी है। समय पर बात करें, अगर कोई गलत फहमी हुई है तो उसे मन में दबाने की बजाय खुलकर शांत मन से बात करके सुलझाना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही त्याग, विश्वास, सहानुभूति,

0: बात कहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की बात को भी पूरी संवेदनशीलता से सुनना भी होता है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम उन्हें ये एहसास दिला पाते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनका हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है।
1: और दूसरा, हमें अहंकार को दूर रखना होगा। रिश्तों में मैं सही हूँ इसके बजाय हमारा रिश्ता सही रहना चाहिए, ये भावना ज़रूरी है। समय पर बात करें, अगर कोई गलत फहमी हुई है तो उसे मन में दबाने की बजाय खुलकर शांत मन से बात करके सुलझाना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही त्याग, विश्वास, सहानुभूति अपने भीतर ज़रूर रखें, जिससे कि हम खुद को सामने वाले की परिस्थितियों में रखकर ये सोच पाने में सक्षम हो सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा या क्या किया।
0: जी हाँ, तो बस इस व्यस्त जीवन में भी कुछ पल अपनों के लिए हमेशा निकालें, उनसे दिल खोलकर बातें करें, उनकी सुने, अपने शब्दों से उनके जीवन में प्रेम का रंग भरते रहें, क्योंकि अंत में वही रिश्ते रह जाते हैं जिन्हें हम अपने प्यार और संवाद से सींचते हैं, क्योंकि फासले बहुत हैं पर दिल पास आ रहे हैं। संगीता जी, फासले बहुत हैं पर दिल पास आ रहे हैं, इन लहरों पर सुरीले पैगाम आ रहे हैं। चलो आज कुछ यूं बात दिल से दिल की करें, चलो आज कुछ यूं बात दिल से दिल की करें, कि मानो खामोश हवाओं को अल्फाज मिल रहे हैं।

0: लिए समय है? क्या सचमुच हम सुनते हैं या केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं अनामिका? श्रोताओं, यही प्रश्न आज के इस कार्यक्रम में है। और जानते हो, जब संवाद रुकते हैं तो अनुमान शुरू हो जाते हैं, जब अनुमान बढ़ते हैं तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं, और जब गलतफहमियां बढ़ती हैं तो रिश्तों की सबसे मजबूत डोर भी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन यही बात है कि रिश्तों में को जो जोड़ने के लिए हमेशा ये प्रयास करने चाहिए, छोटे बड़े प्रयास जरूरी है, जो बस यही करना है कि अगर किसी की मुस्कान है, किसी की मुस्कान को आप देखिए, उसको धन्यवाद कहिए, कभी सिर्फ शब्द में, एक शब्द में माफ कर दीजिए, ऐसा कहिए, कुछ भी आपसे अगर गलती होती है ना, और अगर कभी भी कुछ समझ में ना आए तो कोई अपना है तो उसको गले लगाइए। इससे क्या होता है कि आपसी जो प्रेम होता है वो बना रहता है। नामिका,
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने संगीता जी, कि कुछ करना नहीं है, कभी अगर खटास पड़ भी जाए, उतार चढ़ाव तो जीवन के दो पहलू हैं ही, अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है कि अब मैं ना समझूं या हो सकता है कि सामने वाला ना समझे, तो वहां पता है उस वक्त थोड़ी देर ना शांत रहना सीख लीजिए। या तो ये भी हो सकता है कि हमारा अपना साथी या हमारे अपने संबंध, जो भी रिश्तेदार हैं, हो सकता है वो लगातार हमसे कुछ कहना उसी वक्त चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप प्रति उत्तर ना करने के बजाय बल्कि बड़ी ही शालीनता से, संवेदना के साथ उनकी ज़रूर सुने। हाँ, और अंत में कभी अगर ये आभास हो जाए ना कि शायद वो सही है, मैं ही हर वक्त बार बार गलतियां करती हूँ या करता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लीजिए और बस प्यार से बोल दीजिए, देखिए मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही थी, शायद उस वक्त जो परिस्थिति थी उसे मैं नहीं आभास कर पा रही थी या कर पा रहा था, कुछ नहीं कहना है, सिर्फ जा करके एक छोटा सा मुझे माफ कर दो, ये शब्द ही तो कहना है। और हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान दीजिए, समय होता नहीं है दोस्तों, समय को निकालना पड़ता है। पता है, आज ना हम बहुत टेक्नोसेवी हो चुके हैं, आज ना खतों का जमाना बहुत पीछे छूट गया है, आज ना संवाद के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, हम क्या करते हैं, जाने से बेहतर ये सोच लेते हैं चलो एक टेक्स्ट मैसेज टाइप कर देते हैं या व्हाट्सएप पे एक प्यारा सा संदेश भेज देते हैं। हाँ, ये भी सही तरीका है, लेकिन वही बात है ना कि शब्द अपने आप तो नहीं बोलेंगे हर बार ना, कभी कभी उन्हें भी अभिव्यंजित करने के लिए हमें अपनी वाणी, अपनी आवाज़ का माध्यम ज़रूर देना पड़ता है। जिस तरह हम आपके साथ जुड़ते हैं, सदियों साल पुराना रिश्ता हमारे साथ कैसे तरोताज़ा बना हुआ है, किस तरह आज भी हमारा और आपका रिश्ता 90 दशक से आज भी चहक रहा है, फल फूल रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक तरफा संवाद नहीं है, आप उतनी ही शिद्दत से हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ नवाजते हैं, हमें सुनते हैं, हमें ये कहते हैं कि हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक उसी तरह हर रिश्ते की डोर है, बस उसे समझने की आवश्यकता है, उसे समय देने की आवश्यकता है, क्यों संगीता जी?
0: बहुत सही कहा भाई तुमने। और देखो, जो शब्द होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते हैं नामिका, उनका जो प्रभाव होता है ना वो जीवन भर दिखाई देता है। एक मीठा शब्द थके हुए जो मन होता है ना उसको सुकून देता है ना, और कठोर शब्द जो होता है ना वो हमारे मन को बहुत ही प्रभावित करता है। तो श्रोताओं भाई, इस चर्चा के बाद अब हम आगे सेगमेंट अपना बढ़ाते हैं और बात करते हैं निखार की।
1: अच्छा जी, तो निखार में आज आप क्या क्या करने वाली हैं? वैसे श्रोताओं मैं आपको कुछ बता दूं, देखिए संगीता जी अगर हैं कार्यक्रम में और निखार जैसे विषय की अगर बात हो रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि इनके बालों की जो चमक है वो मुझे हमेशा लुभाती रहती है, क्योंकि इनके बाल बड़े अच्छे हैं और बहुत चमकदार हैं। इनके जो घरेलू नुस्खे हैं ना वो वाकई बहुत ही असरदार होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबकी स्किन अलग है, सबके अपने बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो उपयोग हैं जो शायद मुझे फ़ायदेमंद हो, मेरे लिए कारगर हो, और हो सकता है कभी उन चीज़ों से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए, तो किसी भी चीज़ का ना इस्तेमाल करने से पहले उसके पैच को ज़रूर चेक कर लें, उसे टेस्ट कर लें। तो बताएं आज आप सीरम में क्या क्या बताने वाली हैं?
0: देखो, घरेलू सीरम बताएंगे हम। तो श्रोताओं, अगर आप घर पर आसान और सुरक्षित सीरम बनाना चाहते हैं तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। आज हम आपको जो बता रहे हैं उसको आप

वाकई अनामिका, शब्दों में प्रेम, विश्वास, अपनापन और सबसे बढ़कर संवाद होता है। आज भी हमारे पास शब्द तो हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के

0: ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं बालों को मुलायम और चमकदार रखने के लिए।
1: क्या बात है।
0: तो देखो, बाजार में बहुत सारे सीरम मिलते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं अनामिका, लेकिन घर में भी आप कुछ आसान चीजों से हल्का सा, जो थोड़ा सा हल्का होता है, उसको सीरम बना सकते हैं। इसके लिए आप लेना है आपको 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 2 बड़े चम्मच गुलाब जल, 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल और 1 विटामिन ई कैप्सूल लेना है। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और एक साफ ड्रॉपर बोतल में भर लें। और बाल धोने के बाद जब भी आप बाल धोएं, तो बालों में हल्का जब गीला रहे तो उसमें आप लगाएं, हथेली से अपने लगाना है और थोड़ा थोड़ा आप उसको मालिश करिए, हल्का सा करना है उसको। और जहाँ लंबाई हो ना, जैसे बाल लंबे हैं तो उसमें लगाइए, जड़ों में नहीं लगाना है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये इसे जानते हैं, इससे मुलायम तो होते हैं और चमकदार बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं आपको किसी चीज की एलर्जी है या त्वचा में आपको कोई समस्या होती है इससे, तो आप इसको पहले पैच टेस्ट करके आप देख लीजिए, अगर आपको सूट करता है तो ही आप लगाएं, वरना आप मत लगाइए। क्योंकि जो घरेलू नुस्खे भी होते हैं ना, तो वो भी बहुत से लोगों को नहीं सूट करते हैं। तो आप अपना जो है उसको टेस्ट करके तभी यूज करें। और अब बात करते हैं फेस सीरम की।
1: अच्छा जी, तो आप फेस सीरम के बारे में बताएंगे, क्या बात है। वैसे देखिए, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था ना कि इनके बाल जो है वो हमेशा चमकते रहते हैं, और देखिए इन्होंने आज ना अपना ये जो राज था, छिपा रखा था, वो हम लोग के साथ जाहिर भी कर दिया। तो देखिए, अब आप ये स्किन वाली जो बात बताने जा रही है भाई, मैं उसे बड़े इत्मीनान से सुनने वाली हूँ।
0: तो सुनो भाई, देखो फेस सीरम की जो फेस सीरम के लिए जो त्वचा को ताजगी देता है और नमी भी देता है ये, और इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल।
1: अच्छा।
0: और 2 बड़े चम्मच गुलाब जल और 4 से 5 बूंद आपको ग्लिसरीन लेना है।
1: अच्छा, लेकिन जैसे ग्लिसरीन का आप उपयोग बता रही हैं संगीता जी, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर मान लीजिए सबकी स्किन टाइप तो एक जैसी है नहीं, और मान लीजिए किसी की बहुत ऑयली है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा तैलीय जैसी नहीं होती है त्वचा, तो क्या तब भी हमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है इस सीरम में या नहीं?
0: हाँ, आप कर सकते हैं कम मात्रा में, लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं किसी की त्वचा तैलीय है तो आप कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि देखिए इसको डालने से क्या होता है, त्वचा जो होती है ना हल्की सी मुलायम होती है, इसलिए आप डाल सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में डालें। और फिर इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक साफ कांच की बोतल में भर लें, चाहे तो 1 से 2 बूंद जो है विटामिन ए तेल भी मिला सकते हैं। तो ये सीरम जो है वो अब तैयार है, आप लगा सकते हैं। पता है आपको, आप जब लगाएं तो इसको लगाने का तरीका क्या है, रात में आप लगाएं, चेहरे को अच्छे से धो लें, 2 से 3 बूंद सीरम चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें, इससे त्वचा की नमी जो रहती है वो बनी रहती है और चेहरा जो होता है तरोताजा रहता है।
1: तो भाई तरोताजा रहता है, इतनी सारी बातें बताने के लिए आपको भाई हमारी तरफ से तो बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और मुझे लगता है कि आप भी इस नुस्खे को जरूर अपनाएंगी। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ और क्या हो जाना चाहिए,
0: इसके साथ साथ एक प्यारा सा गीत हो जाए।

0: तो वाकई आपके ये जो पसंदीदा गाने हैं ना, जो सिर्फ आपने मुझे ही नहीं हमारे सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को सुनाया भाई, उसके लिए भी हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और स्पेशली इस गाने के लिए भाई, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई, थैंक यू बोला जा रहा है। मतलब इससे पहले भी मैंने सुनवाया था जो गाना, वो भी आपका फेवरेट था और ये भी गाना।
0: जी
1: तो भाई चलिए हम थैंक यू ले लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि कहते ना, अगर प्यार से कुछ भी दिया जाए, कुछ भी, समझ रही है ना, तो उसे सहज स्वीकार लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, जैसा
0: तो भाई देखिए, आपने तो सीरम की बात बता दी, ठीक है, और अगर आपने सीरम की बात बताई है, निखार की बात करी है, तो किस तरीके से हम अपनी हेल्थ की बात को पीछे छोड़ दें?
1: बिल्कुल नहीं,
0: तो सेहत टिप्स भी हो जाए कुछ।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले बात कर लिया जाए भाई, भुट्टे की बात करें क्या?
1: हाँ हाँ बिल्कुल भाई, देखो ये मौसम भी है और भुट्टा जो है हर जगह हमें दिख रहा है, जहाँ भी निकल जाओ भुट्टा ही भुट्टा दिख रहा है। और जो भुट्टा होता है ना नामिका, पता है वो मतलब इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है ना, और वो खाने में बहुत अच्छा होता है। इसको खाने से क्या होता है कि हमें भूख कम लगती है।
0: जी हाँ, तो भाई जान लीजिए इसके फायदे क्या क्या है। तो जिसे हम मक्का भी कहते हैं, भुट्टे को, स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है।
1: हाँ।
0: ये हमारे पाचन तंत्र के लिए एक वरदान जैसा है। अब आप सोचेंगे भला वो कैसे, तो वो ऐसे कि भुट्टे में अघुलनशील फाइबर की मात्रा जो होती है वो बहुत ही भरपूर होती है, जो हमारे कब्ज की समस्या को दूर करता है। वहीं हमारी आंतों के लिए भी ये बहुत कारगर होते हैं। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में भी मददगार होते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, एक तो भुजा हुआ हम खाते हैं भुट्टा, है ना,
1: हाँ।
0: एक होता है पीले भुट्टा, है ना, पीला भुट्टा जब वो कच्चा रहता है, उसमें पता है ल्यूटिन और जैक्सेंथिन जैसे शक्तिशाली जो होते हैं ऑक्सीडेंट, है ना, जो
1: अच्छा।
0: बहुत ही पावरफुल होते हैं ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा
0: जी हाँ, वहीं ये आपकी बढ़ती उम्र में होने वाले, जैसे मोतियाबिंद की हम बात करें,
1: हाँ
0: या
1: हाँ।
0: आंखों की कमजोरी से हमें आंख से कम दिखाई देने लगता है, उन सारी चीजों के खतरे को भी ये कम करने में बहुत सहायक होते हैं। अभी
1: बिल्कुल
0: आपने
1: सही
0: कहा ना
1: कहा,
0: कि इसमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि आपको भूख कम लगने देता है। जी हाँ, और जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो भुट्टा उसमें आपको हेल्प कर सकता है। कैसे?
1: बिल्कुल
0: अगर आपने उसको एक बहुत ही अंकुरित मात्रा में, जैसे आपने भुट्टे के साथ साथ चने का सेवन कर लेना है, उसके साथ आपको थोड़ी सी हरी सब्जियों का सेवन कर लेना है, जैसे हम बात कर लें कि भाई सदाबहार टमाटर है, प्याज है, नींबू है, इन सबको अगर हम एज अ सैलड के जैसा
1: हाँ
0: भुट्टे में मिक्स करके खाते हैं

0: और उचित मात्रा में खा लें तो आपको पता है 2 से 3 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: इसके साथ साथ संगीता जी इसके और भी फायदे हैं, जानती हैं क्या? ये हमारे ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। जो LDC है, जो खराब वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उनको ये कम करने में सहायक होता है। और साथ ही साथ ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है।
1: अनामिका, जैसे तुमने कहा कि सलाद के रूप में हम खा सकते हैं, तो भाई देखो जो बच्चे हैं ना वो सलाद तो खाते हैं लेकिन उन्हें जो है स्वीट कॉर्न बहुत पसंद होता है। तो हाँ, तो इसका हम चाहें जैसे बाहर से हम लेकर के आते हैं जो मक्के के दाने लेके आते हैं, उसके बजाय अगर हम ताज़ा लेते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। आप भुट्टे को लीजिए, उसके दाने निकालिए, थोड़ा सा आप उसको उबालिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा उसमें उसका पानी निकालिए, उसमें थोड़ा सा आपको डालना है काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, काला नमक डालिए और खूब अच्छे से मिलाइए। और अगर आप चाहें तो उसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे मिर्च है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मक्खन डालिए और फिर उसके बाद बच्चों को खिलाइए। देखिए बच्चे जो है ना, वो अगर शाम के नाश्ते में खाते हैं तो उन्हें बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और फिर वो रात में ही कहेंगे कि भाई हमें खाना चाहिए।
0: अच्छा जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो स्वीट कॉर्न वाली भी आपने बात बताई ना, ये तो मेरे जहन से थोड़ा मुझे लगता है दूर थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन आपने बताया तो भाई ये तो अब मैं भी फॉलो करूंगी। खैर, और इसके साथ मुझे लगता है और भी कुछ है टिप्स जो आप बताने वाली हैं। और
1: बिल्कुल,
0: वो
1: है मदार का उपयोग। देखो भाई, सावन का पावन महीना है और प्रकृति की हरियाली, भक्ति और आस्था का संदेश लेकर आता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। और श्रोताओं, क्या हम सभी जानते हैं जैसे कि भगवान को चढ़ाए जाने वाला जो फूल होता है, मदार का फूल, जिसका जो विशेष स्थान रखता है, इसमें धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी होता है।
0: अच्छा,
1: जानते हो मदार का जो फूल होता है ना, वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से मदार के फूल को भगवान शिव को अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। और यही कारण है कि भगवान के इस महीने में, सावन के महीने में, मंदिरों में इसकी विशेष मांग भी होती है। और जानती भाई, देखो जानती, इसका तो ये धार्मिक महत्व है
0: जी जी।
1: और इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। तो इसका जो है मदार का जो पत्ता होता है ना, उसका औषधीय होता है ये। आप जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको कहीं गठिया है, तो आप उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसको गर्म करके आप उसको लगाइए अपने पैरों पर जहाँ पे आपको दर्द है, तो वो सूजन कम करता है।
0: अच्छा, यानी पत्तों में हम कहने को, जैसे कि बचपन में हमने देखा था कि वो नानी दादी क्या करती थी कि उनके पत्तों को तोड़ के लाया करती थी। और जहाँ पे भी चोट लगी है या आपको बहुत दिनों से सूजन है या दर्द जोड़ों में बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त ना नानी और दादी ये किया करती थी कि इसके पत्तों को तोड़ लाया करती थी और उन पत्तों पे ना हल्का सा तेल लगाती थी, उसे हल्का सा गर्म कर लेती थी पहले। और तेल लगा करके जहाँ भी सूजन है या चोट लगी हुई है या जोड़ों में कहीं भी दर्द हो रहा होता है ना, तो उन पत्तों को वहां पे बांध दिया करती थी। और उससे क्या होता था कि आप देखिए, अगर रात भर बांध करके छोड़ दिया जाए और सुबह उठे तो दर्द गायब।
1: हाँ,
0: तो ये इसका औषधि बहुत अच्छा कारगर और महत्व है।
1: बिल्कुल अनामिका, जानते हो जब मैं छोटी थी, तो मैं बता रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पैर में, हम खेल रहे थे, खेल सब बच्चे दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, तो एक कांटा मेरे पैर में चुभ गया था, मेरे नाखून में, अंगूठे में जो होता है उसके अंदर घुस गया था। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं खूब रोई खूब रोई, किसी तरह से भी वो निकल ही नहीं रहा था। तो मम्मी ने क्या किया कि मदार का दूध लिया, उसको रुई में खूब अच्छे से निचोड़ दिया, खूब भिगा दिया उसको।
0: अच्छा।
1: और फिर उसको मम्मी ने वहीं जहाँ पर कांटा लगा था वहाँ पर रख दिया, रख करके उसको बांध दिया। रात भर वो रखा रहा और जब मैं सुबह उठी हूँ तो वो थोड़ा सा बाहर आ गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो मम्मी ने उसको चिमटी से पकड़ के उसको खींच लिया। मतलब इतना ये कारगर होता है ना। और जो दर्द था वो भी कम हुआ, सूजन भी कम हो गया मेरा, और बहुत ही मुझे राहत मिली थी। तो ये बहुत सारी चीजों में फायदेमंद होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, और वो क्या है?
1: वो है इसका जो दूध होता है
0: जी,
1: वो बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी आंखों में ना लगे, क्योंकि भाई ये आपकी आंखों के लिए जलन हो सकता है इससे, और आपके मुंह में ना जाए।
0: अच्छा।
1: बहुत ही हानिकारक होता है, तो इसका बहुत ही सुरक्षित प्रयोग करना चाहिए।
0: तो यानी कि प्रयोग तो हमें करना है लेकिन बचाव के साथ। तो कहते हैं ना कि देखिए, चीजों के भाई नुकसान भी है, फायदे भी हैं। तो फायदे तो इसके अनेक हैं, लेकिन वही कि इसके साथ आपको सुरक्षा भी अपनानी है। तो ध्यान दीजिए और देखिए, कितनी ही आसान चीजें हमें बड़े आसानी से मिल भी जाती है।

0: और अभी तो इसकी बहार ही देखने को मिल रही है, हर मंदिरों
1: बिल्कुल
0: में, आसपास कहीं पे भी झाड़ियाँ होंगी या आसपास कहीं पे भी आप बागवानी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपको मदार का एक छोटा छोटा पेड़ पौधा ज़रूर दिख जाएगा। तो भाई
1: बिल्कुल
0: इसके इस्तेमाल को करना ज़रूर है, लेकिन सुरक्षा के साथ। और अब क्या करना है?
1: अब सुनना है एक प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर। और अब दीजिए हमें अनुमति, मैं संगीता
1: और मैं अनामिका, नमस्कार, नमस्कार।

0: the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, three Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
4: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास

0: बात हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल हैं, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुँच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग

0: शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार

0: पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का

0: खैर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओ, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
2: जी
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
2: जी
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल

0: बोलेगा
1: क्या बोलेगा?
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी, इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के ऐप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे ऐप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक
0: मालिक
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए, और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज।
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज।
4: हम आपका

0: अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
1: आज्ञा दीजिए महाराज, कैसी शर्त?
0: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
1: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे। छीन ले, छीन ले।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, गोल हो गया। किसी का
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: कहां फंस गई?
9: ए, इधर क्या देख रहे हो?
1: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
8: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
9: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
10: चलो चलो चलो।
1: अरे भाई, लेकिन
8: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
11: बाबा,

0: गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो। मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
1: हाँ, ठीक है,
0: कोशिश करते हैं।
1: हाँ,
2: निकल गए।
3: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
1: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
0: जी बाबा।
1: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
0: तो क्या इनाम देते हो?
1: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
3: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
0: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
4: तुम्हें क्या लगता है? महाराज आ रहे हैं।
0: अरे अरे,
4: सुजान सिंह जी भी आ गए।
3: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
5: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
6: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
5: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
0: सही बात है।
5: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
0: बिल्कुल सही कहा,
5: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
3: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
0: अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।
1: भले
0: बिल्कुल।
3: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
6: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
7: महाराज की
8: जय हो।
7: महाराज की
8: जय हो।
7: महाराज की
8: जय हो।
7: महाराज की
8: जय हो।
3: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
10: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
11: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

senhora Joy.

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा, अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं।

0: कौआ उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है, उसके साथ ही कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ चलो
3: चलो चलो कौवे
1: चलो,
3: भाई
1: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।
0: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
2: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
2: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
0: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 100.3 MHz पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, ये सभा समाप्त तो होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम एक 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की शांतिकालीन सभा। श्रोताओं, सभा का आरंभ कर रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। प्रोग्राम का आगाज कर रही हैं परख फिल्म के इस गाने के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, बोल शैलेंद्र की और संगीत सलिल चौधरी ने तैयार किया है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

प्रोग्राम के आखिर में किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये गाना सुनिए। आनंद बख्शी साहब का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया।

आरडी बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में प्रोग्राम का आखिर नगमा आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी साहब का लिखा और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना था फिल्म कटी पतंग से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप इस वक्त आकाशवाणी प्रयागराज के साथ हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। हमारा ये ऐप प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है, न्यूज ऑन AIR ऐप।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कुछ ही पलों में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर. हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को है। अब वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता

0: आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरम और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाली शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे चर्चा का विषय कार्यक्रम। दिल्ली से ही रात 8 बजे प्रसारित होगा संसद समीक्षा और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे 8 बजकर 20 मिनट पर विधानमंडल समीक्षा। 8 बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे सोनू निषाद के गाए भजन और गीत। श्रोताओं ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारी शेष कार्यक्रमों की और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशा। रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। दिल्ली से ही शाम 4 बजे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम रिलीज किया जाएगा संदेश टू सोल्जर्स। सुबह 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर लोकमान्य तिलक के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35

मिनट पर डॉक्टर शिशिर कुमार से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा दलहनी फसलों में शस्य क्रियाएं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:45 पर। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता होगी। विषय होगा बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर डॉक्टर अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरित मानस ही संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे लेकर हम हाजिर होंगे और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। हम आपको बता दें आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गौरी शंकर का क्लैरियोनेट वादन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी डॉक्टर रागिनी मेहरोत्रा से शैल श्रीवास्तव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा नई संतान दंपतियों के लिए आशा की किरण IVF। इसके अलावा फिल्म मिलन के गाने सुनवाए जाएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी डॉक्टर रागिनी मेहरोत्रा से शैल श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा निःसंतान दंपतियों के लिए आशा की किरण IVF। दिन में 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग। कल शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे किसान भाई लोकगीत के अलावा सुनेंगे किसान चर्चा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में रामेंद्र कुशवाहा की कहानी प्रसारित की जाएगी। 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा और 8:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से विधानमंडल समीक्षा हम रिले करेंगे और 8:30 पर आप सुन सकेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। तो श्रोताओं ये थी जानकारी इस समय में प्रसारित होने वाली हमारी शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी प्रयागराज के साथ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: बार हुआ तुम इतने दिन थी कहां, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहां।
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। सप्तत्युत्तर त्रिशत संवैधानिक नियमस्य निरसनानन्तरं कश्मीर लद्दाखयोः प्रजानां भाग्यं पूर्णतया नवदिशाम् अवाप्तवत् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। भारतीय रिजर्व बैंक संस्थया अस्मिन् वित्तीय वर्षे जीडीपी वृद्धिः 6.7% यावत् अनुमितः। उदितं च यत् देशस्य आर्थिक विकासः सुदृढयाचनया समर्थितः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य स्पष्टीकरणं यत् युव प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। रांची नगरे जेपीएससी जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्र प्रतिरोधः तीव्रतरो जातः। असम मेघालय राज्ययोः अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। बैडमिंटन स्पर्धायां आसान नगरे कोरिया ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः प्रविष्टवत्यः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत यत् सप्त वर्षेभ्यः पूर्वं 70

0: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्येषु अद्य अतिवृष्टिमुद्दिश्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अत्रांतरे देहली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु आगामी दिनद्वयं यावत् अतिवृष्टि संभाव्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ब्रह्मपुर नगरस्य पार्श्वस्थे धवलेश्वर मंदिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। अयं तस्याः ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायाः अन्तिमः कार्यक्रमः आसीत्। इतः प्राग् सा गोपालपुरस्थे आर्मी एयर डिफेंस महाविद्यालये अपि अगच्छत्। तत्र सा महाविद्यालयस्य अधिकारिभिः सह अपि वार्तालापम् अकरोत्। कर्णाटकराज्यस्य यादगीर जनपदस्य सैदापुर समीपे केडिचूर बडिडाल औद्योगिकक्षेत्रे अद्य रासायनिक वाष्प स्रावेन त्रयः कार्यकर्तारः दिवंगताः। अनेन स्रावेन प्रभावितौ द्वौ कार्यकर्तारौ रायचूर नगरस्य चिकित्सालये उपचारार्थं प्रवेशितौ स्तः। यादगीर जनपदस्य उपायुक्तः राहुल तुकाराम पांडवे अवोचत् यत् औषध रसायन निर्माण संयंत्रे नलिकायाः सल्फर ऑक्साइड वाष्पस्य श्वासाकर्षणेन एषा दुर्घटना अभवत्। दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायाः महिला एकल स्पर्धायाः द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः ईशा रानी बौरुआ, तन्वी शर्मा, श्रियांशी वालिशेट्टी च प्रविष्टवत्यः। द्वात्रिंशत्तमे चक्रे ईशारानी दक्षिण कोरियायाः ली सोही इत्येतां पराजितवती। तन्वी चीनदेशस्य आंची युआन इत्येतां पराभूय अग्रत्वं भजते। श्रियांशी च चीनी ताइपे देशस्य यू पो पाई इत्येतां पराभूय विजयत्वं अवाप्नोत्। अनेन सहैव महिला युगल स्पर्धायां सोनाली सिंहः रितिका ठाकुर इत्येतयोः युगलं दलं तथा मिश्रित युगल स्पर्धायां श्रुति मिश्रः ईशान भट्ट नागरयोः युगलं दलमपि द्वितीय चक्रं प्रविष्टवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम।
1: हम कही बद्री भैया।
0: हाँ दुर्गा भैया।
1: देखा भाई तनी के देव राजा तो भाई देखा खुश है।
0: हाँ हाँ एकदम सही कहा
1: है ना।
0: हाँ
1: तो भाई देखा जौन भाई पछैती के धान बा।
0: हाँ
1: वो लागत बा को अब उम्मीद जाएगी बा के रुपाई शुरू हो जाए।
0: भैया हम एकदम सही कहा था। सब कहन भैया आएगा सूखा आएगा सूखा
1: हाँ,
0: आएगा सूखा
1: सूखा
0: आएगा। और देखा जब देव राजा एकदम मुस्कुराने तो सारा किसान मुस्कुराता है।
1: अरे बद्री भैया दुई बार मानसून बना
0: हाँ
1: ऐसा कहा कि अब बारिश हुई अब बारिश हुई फिर गड़बड़ाई जाए
0: हाँ
1: लेकिन अब के ठीक ठाक आए।
0: सही। और भैया एक बात ध्यान रखें, देखें जे लगाए चुका रहे धान पहली पाती में, यानी जिनका 22 से 25 दिन हो गया है या
1: हाँ
0: 18-20 दिन हो गया है, वो इस समय खाद का छिड़काव कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: पानी बढ़िया मिलता है जब बारिश न होता है, ओकरे पहले छिड़काव कर लें ताकि पानी

0: बढ़िया उनका मिल जाए,
1: मिल जाए जितना भी जोन बताएं कि कीटनाशक और उर्वरक, और साथ ही साथ जहाँ जैसे भाई नहर के किनारे बाटे भाई ज्यादा पानी लग जाए,
0: सही बात
1: तो वो के भाई निकासी की व्यवस्था ठीक ठाक रहे। और खास कर जौन भैया बजरी उजरी बोए हुए यार, वो देखे अगर पानी टिकत हो तो नाली नाली बनाए के पानी निकारे की व्यवस्था करें।
0: और दुर्गा भैया देखा ये है सबसे बढ़िया समय होत निर्वही का,
1: हाँ,
0: यानी अगर तहा जोन कीला रहा वो जमीन में पकड़ ले बा और ओकरे खाद डावे से पहले, यानी खाद केवल खेते में लागे पेड़े में लागे एकरे बर ए समय सबसे पहला काम करे निर्वही कह दिया, और चाहे खुद लगा या मनई के साथ साथ ए समय निर्वही करा। ध्यान ही देख रही कि जौन भैया उखाड़ा होमस निर्वही निकाला ओका मेड़न पे न रख दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल बाहर फेंक किया।
0: हाँ
1: तो ये बहुत जरूरी बात, ये जौन छोट छोट बात होते ना भैया, हमका लगत है अपने पंच भैया रे जानत खूब है
0: भैया, ओ नहीं पंचायती ये ओ नहीं के आटा है, हम अहू लोग तो वही करी थी बस ये याद दिया दिन जात बजरंग बलिक जैसे याद दिया देते रहे उनकर की ताकत का है, मोलो किसान भाई याद दिया दी थी
1: बदरी भैया, थोड़ा का जागरूक करे पड़ा था कौन चीज के लिए, और वही काम हम

0: मैं होत निर्वही का,
1: हाँ,
0: यानी अगर तहा जोन कीला रहा वो जमीन में पकड़ ले बा और ओकरे खाद डावे से पहले, यानी खाद केवल खेते में लागे पेड़े में लागे, एकरे बर इसमें सबसे पहला काम करे निर्वही कह दिया, और चाहे खुद लगा या मनई के साथे साथे इसमें निर्वही करो। ध्यान ही देख रही कि जोन भैया उखाड़ा होमस निर्वही निकाला ओका मेड़न पे न रख दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल बाहर फेंक किया।
0: हाँ
1: तो ये बहुत जरूरी बा, ये जोन छोट छोट बात होते ना भैया, हमका लगत है अपने पंच भैया रे जानत खूब हैं
0: भैया, ओ नहीं पंचायत ये ओ नहीं के आटा है, हम अहू लोग तो वही करी थी बस ये याद दिया दिन जात बजरंग बली जैसे याद दिया देते रहे उनकर की ताकत का है, मोलो किसान भाई याद दिया दी थी।
1: बदरी भैया थोड़ा का जागरूक करे पड़ा था चीज के लिए, और वही काम हम सब भाई देखा करते बताए पड़ा था कि कहाँ कहाँ तकनीकी रूप से कहाँ गड़बड़ी होती
0: है। जागरूकता से भैया याद आए कि देखा इसमें भैया साफ सफाई को लेके बहुत अहमियत बरती जाती है, और बारिश आ गया है तो बारिश में देखा है चाहे कीचड़ हो या कूड़ा कबाड़ रखा है तो सड़प गलप शुरू हो जाता है, तो इसमें बड़ा भैया सावधानी बरते चाहिए।
1: नहीं भैया ये बात बा, अब देखा हम सब कहबो करते थे कि आपन जौन गाँव आ वो आपन एक पहचान आ।
0: हाँ भैया
1: ठीक है, चाहे माटी हो, खेत हो, बाग बगीचा हो, पोखरा हो, चौपाल हो, ये अपना अपन जोन दुनिया में भाई कहूँ और ना ना भैया।
0: सही कहा था भैया, और यही में भैया शामिल हो गया है। देखा भैया अब गांव गांव जोन कूड़ा घर बनता है ना भैया, एकर इस्तेमाल करे का इस सबसे बढ़िया समय आ
1: है। और का भाई देखा कि जौन भाई घरे अब देखा गांव में भाई देखा रोज कूड़ा निकला था।
0: हाँ
1: भाई चाहे सब्जी के छिलका हो, चाहे भाई देखा आजकल के गांव गांव में भी भाई देखा सब पैकेट बंद हो गया बा, और पॉलीथीन भी पहुंच गई बात
0: सही
1: है।
0: बात है
1: तो वह निकलत बाटे और साथे साथे बासी भाई भाई खाना बच जात बाटे तू हो बा, तो जरूरी बा कि आपन दुआर तो साफ कर लेन दाएं बाएं फेंक दे, तो भाई ऐसे बचब जरूरी बाटे।
0: सही दुर्गा भैया, और एकरे साथे एक अपील सब भाइयन से करे चाहब कि देखा भैया हम लोग गांव के मनई है, यानी हमका लोग का पर्यावरण से सिर्फ प्रेम नहीं हो तो हमारे जरूरत है हमारे आत्मा या, और अगर पॉलीथीन हमारे आत्मा का चोट पहुंचावती है तो पहला काम हमका यह करे पड़ी कि भैया पॉलीथीन छोड़े के पड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात तो भाई बाजारे जा अपन थैला लेके जा जैसे पहले रहा,
0: पहले रहा
1: ठीक बा।
0: भैया अपने सबके बचपने में याद है के करे कि यह पन्नी रही भैया
1: कहाँ पन्नी देखे
0: कि नहीं मिलत रही,
1: देखे कि नहीं मिलत,
0: पता लगा अपन पैंटुआ जोन पुरान भर है अम्मा वो काट के सी देत रही कि यो झोला बन गया।
1: बिल्कुल भैया, और दूसर एक चीज और भैया।
0: हाँ भैया
1: देखा जौन कहन की गाँव गाँव सरकार जौन बा हर पंचायत में कूड़ा घर बना।
0: हाँ भैया
1: तो अब हमें जौन भाई एमे थोड़ा सा आपन भी जागरूक हो एक पड़ी, जो उन गीला कूड़ा बाट है
0: हाँ।
1: ओका भाई गड्ढा खोद के आप जैविक खाद तैयार कर सकते।
0: बिल्कुल भैया,
1: और जो उन सूखा कूड़ा बा भाई बना बाटे ओका ले जा हुआ छोड़िया।
0: अब ये बहुत बढ़िया भैया बात कहें कि देखा अपने जो उन पंचायती में कूड़ा घर बनता है भैया हर ग्राम पंचायत में, ओकर ही खासियत यह है कि हुआ गीला सूखा और जोन केमिकल वाला जितना अलग चीज कहा है सबका अलग अलग बॉक्स बनावा गया है, और भैया ओकरे बड़े ग्राम पंचायती में अब बजट आवता है कि ई रिक्शा खरीदता है और ई रिक्शा गांव गांव में घूम के जहाँ पे व्यवस्था नहीं बा कूड़ा एकत्रित करत हीन और ले जाके इकट्ठा करे के बाद ओमा जोन लोहा वोहा रात सब छाट के बेचत हीन और उसी भैया अपन आमदनी पंचायत बढ़ावा।
1: आमदनी पंचायत आमदनी तो बढ़ते ही बा चार पैसा के कुल मिलाए के कहा का मतलब बा कि जोन कूड़ा घर बना एका कैसे व्यवस्थित और सही तरीके से उपयोग करें, जैसे आप कहें कि गीला कूड़ा बा सूखा कूड़ा बा वही ढंग से रखें, और दूसर एक तरीका बा कि गीला कूड़ा बा जैसे जूठन बा घर के खाना बचा बाटे या फिर सब्जी के छिलका बाटे एका जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें।
0: सही, और भैया जैविक खाद ये समझा कि आपका बिना एक रुपया लागे और आप आमदनी दुगना करे के एक घरे बैठे उपकरण समझ लिया का आमदनी का पात्र समझ लिया कुछ समझ लिया आपको फ्री मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल कही गए बद्री भैया, तो कहे का मतलब बा कि यह छोट छोट बात तनी के समझावे के जरूरत पड़े।
0: हम कहे कि दुर्गा भैया देखा बरसात में जब आवा है ना जब रोपाई देखा चलत तो है अंतिम चरण में, लेकिन ये हो कि पंचायती के माध्यम से जब किसान भाई घरे आ रहा थे इंतजार करत रहा थे कि भाई पंचायती में कुछ लोग गीत बाजी तो भैया आनंद आई जाए।
1: भैया हम समझते है कि भाई जब धान के बात हो और रोपाई के बात हो
0: हाँ।
1: तो भाई देखा आज पंचायती में आसरा द्विवेदी के एक ठो रोपाई गीत बा।
0: अरे बा भैया
1: सुना भाई पंच भैया भी सुना।
0: बिल्कुल भैया सुनवा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया,
4: तो बद्री भैया,
3: हाँ,
4: ये रही रुपाई गीत,
3: हाँ, और साथ ही साथ रहा संदेश।
4: तो भाई देखा, कहा जाता रहा कि भाई साफ सफाई के हम सब बात करते रहे कि स्वास्थ्य पर एकर कितना भाई देखा असर पड़ा था। अगर साफ सफाई रही तो कौनो बीमारी घरे के अंदर ना आई।
3: बिल्कुल भैया, और चाहे अपन शरीर, जैसे भैया उदाहरण ले ले चाहिए कि का हम लोग जहाँ अपन घर रखी थी, का घरे में अपने गंदगी उंदगी ले आ किसे भर दी थी, या खाना खाते समय तो सब आदमी हाथ धुला था, ओकरे बाद भोजन करा था। ये सब छोटी छोटी चीज जो बदलाव ले आ जाता ना भैया, तो गाँव का अपन घर समझा, ये पूरा गांव अपन घर आ। अगर गांव में यानी अपने घरे में कहूं कूड़ा एक जगह फेंका जाता है तो गलत आ, ओका सही जगह ले जा ताकि निस्तारित हो जाए।
4: सही जगह रहा, और कभो कभो कहा तो एकजुट होई के भाई स्वच्छता के भी कार्यक्रम चलावा।
3: सही बात है।
4: जब आप देखा गली बाटे तनी के बाद अपन दुआर साफ कैलिन, किनारे कहूं फेंक दिन, सड़त बा गंधात बाटे, बदबू मारत बाटे, तो वही से भाई कई बीमारी पैदा हुई है। और यह समय तो बारिश चलते बात, तो मच्छर जनित बीमारी तो और भैया आई।
3: सही बात भैया, संचारी रोग के समय बहुत ज्यादा प्रभाव पड़त है। और अबहीं से अगर हम ध्यान न दें, यानी कि हमका लोग का देखे पड़ी का हमरे अगली बगली कोनो गड्ढा उड्ढा अगर बना है तो कहा हम पानी भरा है। अगर छत उत पे देखा भैया टायर वर फेंक देते तो कहूँ वहां पानी तो नहीं भरा है।
4: तो काहे का मतलब का भैया कि ये सब जो छोट छोट बात बा, ऐसे भाई आपन स्वास्थ्य के ध्यान दें। काहे से सावन आ, और सावन भाई बरसत बाटे और बरसी है, तो पानी जहाँ भी जमाव की समस्या हो ओका भाई खत्म करें पहले। और जब बद्री भैया,
3: हाँ भैया,
4: सावन के बात हो और कजरी की बात ना हो तो
3: भैया सही कहा कि सावन और कजरी दोनों ऐसे हैं जैसे शरीर और आत्मा। तो भैया अगर शरीर बैठी है यानी पंचायत बैठी है तो फिर आत्मा तो बजवाही दे।
4: तो फिर जब मन करते बात है तो ले भैया सुने कजरी।

0: तो
1: भैया
0: बद्री भैया
1: हाँ
0: माथे चंद्रमा सुहाए सुहाए।
1: हाँ
0: तो भाई देखा था कि तू खूब झूमत रहा।
1: भैया आश्रया द्विवेदी जी इतना बढ़िया है का कजरी देवे बहन की लगत है कि जो सावन का हम लोग महसूस करे चाहत रहे वो बारिश के साथे साथे फुहारा कजरी को चला आया है।
0: हाँ, तो भैया बद्री भैया एक चीज जरूर, देखा
1: हाँ
0: साफ सफाई के बात हुई गे, आज जो सबसे ज्यादा जरूरत बाटे कि वो खेती में तकनीक के ज्यादा प्रयोग करें
1: हाँ
0: और साथे साथे आज जो बाजार के मुताबिक खेती करें। तो बाजार के मांग बाटे ई कि प्राकृतिक या जैविक तरीके से खेती करा और कम से कम रसायन के प्रयोग करा।
1: भैया अब तो जैविक खाद से तैयार किए गए सब्जी अन्न एक अलग बाजार बन गया है। आप चाहे ऑनलाइन बेचा और चाहे बाजार में ले जाकर बेचा, केवल अगर जैविक का टैग लगा है तो जाना जितने का आपका माल है ओकर दुगना एक तो रेट मिला था और दूसरा ओका खाऊ वाला स्वस्थ हो रहा और तुहु को बहुत बढ़िया संतुष्टि रही कि हम बिना केमिकल वाला कोनो पदार्थ तैयार करे ही कोनो अन्न तैयार करे ही।
0: बिल्कुल भैया, सबसे बड़ी चीज़ बा कि जौन ओसे उगी वो तो स्वास्थ्यवर्धक रहबे करी, साथे साथे सबसे बड़ी चिंता आज जौन बा वो माटी के सेहत
1: हाँ
0: बाटे।
1: भैया का बात सही
0: भाई
1: कहना।
0: माटी के सेहत ठीक रही तो सब चीज अच्छा होगी, उत्पादन बढ़ी और जौन भी प्रजाति बहु बा देखा कभो नुकसान में ना रहबा। तो ये कभो कभो कई भ्रांति बा कि भाई जैविक अगर हम

0: अपनाओ तो हमार कम पैदा हो जाए। तो कहा तो मैंने कि धीरे धीरे जब माटी के संरचना ठीक हुई, माटी की सेहत ठीक हुई, तभी तो भैया जैविक खेती के प्रभाव देखी।
1: बिल्कुल सही बात है भैया, जैसे आप अपने स्वास्थ्य के लेके देखा कि आप बहुत सारे लोग होते हैं कि प्राकृतिक चीजन को उपयोग करता है, बढ़िया खान पान केवल देसी रखता है, बाहर का जोन तला भुना चीज हो या बाहर का जो आजकल फास्ट फूड बनाता है उसका नहीं खाता है, तो कितना बढ़िया स्वास्थ्य रहा था। ठीक ऐसे समझा कि आप खेती में अगर तला भुना यानी कि केमिकल वाला और बाहर की चीज यानी खाद वगैरह नहीं डाला था और वहाँ हरी खाद से बढ़िया होकर उपजाऊ क्षमता बढ़ावा था, जैविक खाद तैयार करके अगर डाला था, रसायन डाले पड़ता है तो निमकौर को बढ़िया बना लेता है, एक एक साथ तक चलता है, ऐसी भैया ना सिर्फ अनाज बढ़िया पैदा होता है बल्कि जो आप कहें कि माटी संरचना वापस वही पीछे स्थिति में लौट जाई जेका कहा तरह कि भारत का माटी सोना उगल था।
0: बिल्कुल भैया, और देखा कि ये अब जरूरी बात है, ये समझ ले कि अब ना अपनाऊबा तो पीछे रह जाबा।
1: सही बात है
0: कि समय के मांग बा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमका सबके फिर लौटे पड़ी।
1: बिल्कुल, हम कहे कि दुर्गा भैया देखा बातचीत होत रही, बतावा जो अपने पिटारा में रखे रहे आप का सुनो पंच
0: भाई। देखा कि पिटारा में तो 8 दिन बाटे नीति वचन के।
1: अच्छा भैया,
0: एका अजय कुमार शुक्ला भैया देखा आज का बतियाई हैं, लेकिन मुला हम कही कि तनी एक बार आश्रय द्विवेदी के पूर्वी गीत बाटे तो हम सुनाओ पंच भैया।
1: बिल्कुल भैया सुनवा दें।

0: तो बद्री भैया ये देखा रहा अपने आसरा द्विवेदी के पूर्वी गीत। अब देखा तही कि तू बराबर झूमत आ भैया, रुपाई होई गए, ठीक बा, कजरी होई गए, अब पूर्वी होई गए। तो काहे के मतलब भैया कि जब हम खेती के, जैसे हम सब बात कीन जैविक खेती के, तकनीक के बात करते ही, सारी सब कुछ बात करते ही, तो ओमे एक चीज भी आवत है कि भाई देखा जब जैविक खेती के बात करब तो यही में जुड़ा बाटे गोरु बछरुआ रखे के पड़ी, खेती बारी यही बिना कहा जात है। तो खेती बारी के बात होत रही, आगे हम सब बात करबे। तो देखा जौन बात करते रहे कि नीति वचन बा अजय कुमार शुक्ला भैया के, देखा का कहत अहें, एक तुहु सुना और पंच भैया भी सुने। तो भैया नीति वचन श्रीपति उपाध्याय जी के है, एका तुहु सुना और पंच भैया भी सुने।
1: हमारे देश के मनीषियों ने, ऋषियों ने पूरे विश्व के लिए एक उपदेश दिया है जिससे उनका कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने नीति वचन कहे हैं। वो नीति वचन बहुत ही अनुभव के बाद, सारी घटनाएं जो घटी उनके जीवन में उससे उनको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को नीति वचन कहे हैं। जैसे लिखा है, विद्वान शत्रु ही भला नच मूर्खो हितकार कह, मान ऋण हतो राजा विप्र चौरिण रक्षित। लेकिन इसके पीछे एक कथा है। कथा यह है कि एक राजा थे, गए जंगल में, वहाँ बंदर बंदरी का एक पेयर था। तो एक मुहूर्त राजा हमारे यहाँ, उसके मुहूर्त की भी अपनी अच्छी परंपरा है, उसकी महत्ता है। तो उसने था कि इस मुहूर्त में अगर ये दोनों एक तालाब में कूद जाएंगे तो एक राजा हो जाएगा, एक रानी हो जाएगी। दोनों एक साथ कूदे, बंदरी पहले निकल गई और बंदर बाद में आया, बंदरी रानी हो गई, बंदर बंदर रह गया। एक राजा गए शिकार खेलने के लिए, उन्होंने देखा कि यहाँ एक दिव्यांगना है। तो उन्होंने कहा, भाई तू रनिवास काबिल है, उसको ले गए। लेकिन रानी ने कहा कि बंदर भी हमारे साथ रहेगा। राजा को नहीं पता था कि इसकी ये पूर्व प्रेसी है, इसका ये पूर्व प्रेमी है। जब लिवा गए अपने रनिवास में, तो एक दिन राजा और रानी दोनों सोए हुए थे। रानी का हाथ राजा के गले में था, राजा का हाथ रानी के गले में था, और तलवार रखी थी। तो बंदर ने सोचा कि मार दें, राजा गला कट जाए, तो तलवार उठाया, मारने जा रहा था। उसी समय एक विद्वान थे जिनको बड़ा धनाभाव था, और वो चोरी करने के लिए से राजा के उस महल में घुस गए। तो उन्होंने देखा कि राजा का जीवन खतरे में है और बंदर उनको मारने जा रहा है। तो पशुओं की भाषा उनको मालूम थी, उसमें उसे बोल करके तलवार अपने हाथ में ले लिए और बंदर को उन्होंने मार दिया। और बंदर के खून से उसी तलवार पर एक श्लोक लिखे कि विद्वान शत्रु ही भला नच मूर्खो हितकार कह, मान ऋण हतो राजा विप्र चौरिण रक्षित। फिर आगे कहा गया, नदी नाम नखी नाम श्रृंगी नाम सहस्र प्राणी नाम विश्वासम नवे कर्तव्य स्त्री राजकुलेश। ये नदी में जब तक न जाने आप कहाँ भंवर है, कहाँ दह है, कहाँ ज्यादा धारा है, जब तक न जाने उसमें प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए बिना समझे।

नाखून वाले जानवर का विश्वास नहीं करना चाहिए, श्रृंगीराम सिंह वाले जानवर का विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो आदमी अपने हाथ में शस्त्र लिया हो, आप ये सोचें कि निर्द्वंद है कि नहीं अटैक नहीं करेगा, वो कब आपको मार दे कोई भरोसा नहीं है, उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजकुल का भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैवचित राजचित इनका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर आगे कहा गया, अज्ञात कुल शीरेश वासो देवन कश्चित मार जा रहा शहीद दोषण हतोवृद्ध जरद गवह, जिसके कुल खानदान के विषय में, जिसके प्रकृति के विषय में, जिसके स्वभाव के विषय में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी न हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक गिद्ध रहता था, जरदगांव नाम का। गिद्ध बूढ़ा हो गया था तो सारी पक्षियों ने सलाह किया कि हमारे बच्चों की रखवाली करेगा, हम इसको चारा देंगे। और जब पक्षियाँ चरने चली गईं तो एक बिल्ली आई भेष बदल करके। वेशभूषा का बड़ा महत्व होता है। उसने कहा कि हम भी वृद्ध हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो गिद्ध ने कहा कि नहीं, आप मांस खाने वाली प्रजाति है, हम आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उसने कान छुआ, कंठी छुआ, जमीन छुआ और गिद्ध को अपने विश्वास में ले लिया। और गिद्ध ने विश्वास कर लिया बिल्ली, उसके स्वभाव जाने। अंत में हुआ क्या, बिल्ली जब पक्षी चली जाती चरने के लिए, एक एक बच्चा रोज खा जाती थी, अब बच्चे की संख्या कम हो गई, पक्षियों को संदेह हुआ कि यही गिद्ध सारा बच्चा खा जा रहा है। अंत में पक्षियों ने मिल करके गिद्ध को मार डाला। तो उस पर विद्वान ने लिखा कि अज्ञात कुल शीलेश वासुदेवन कश्चित मार जा रहा शहीद दोषेण हतो वृद्ध जरद गवह, दोष था बिल्ली का, मार जा नाम बिल्ली, दोष बिल्ली का था और मारा गया बुढ़ा गिद्ध। हमारे नीति कारकों ने, हमारे मनुष्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। उनका दिवा वीक्ष वक्तव्यम रात्रम नैव नैव च, दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति वट वृक्षे वन रुचिर यथा। दिन में अगर आप कोई गोपनीय बात कर रहे हैं तो दाहिने बाएं अगल बगल जरूर देख लीजिए, और रात्र में कभी गोपनीय वार्ता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति, ये दुर्जन जो हैं हर जगह है, इनकी उपस्थिति रहती है। वट वृक्षे वन रुचिर यथा, अब ये वट वृक्ष वन रुचिर यथा, वन रुचिर नाम के बड़े विद्वान थे। तब इसमें एक छोटी सी कहानी है, एक विद्वान से पढ़ के आ रहे थे तो लौटे थे, एक जंगल में एक स्वर्णकार मिल गया उनको, सारा धन ले लिया और कहा मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हमको मार दें, लेकिन हम दो अक्षर लिख देते हैं, हमारे घर पर भेज देना। विद्वान ने लिखा अप्रसिखा, ये चार अक्षर उन्होंने लिख दे दिया और कहा कि हमारे घर भेज दीजिएगा। इतना किया जो स्वर्णकार ने, चार अक्षर को उनकी पत्नी के पास भेज दिया, उनकी पत्नी के पास भेज दिया। और काफ़ी दिन जब विगत हो गए, विद्वान नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी गई राजा के यहाँ। तो राजा अपनी समस्या बताई, राजा ने विद्वानों की सभा बुलवाया। सारे विद्वान जब इकट्ठा हुए तो ये उन्होंने रखा कि अप्रसिखा, इसका आप लोग बताइए क्या तात्पर्य है। कोई विद्वान नहीं बता सका। जब नहीं बता सके तो राजा ने कहा कि कल के एक दिन मौका देते हैं और परसों आप लोग सबकी फांसी कर दी जाएगी। सारे लोग घबरा गए, सारे विद्वान भागने लगे। तो उसमें बड़रुचि नाम के एक विद्वान थे, जो कि भागते भागते जंगल में जान बचाने के लिए गए, तो उसी कोटर में जहाँ वो गिद्ध बैठता था, उसी बरगद में एक कोटर था, उसी कोटर में जाकर बैठ गए। गिद्धनी उसकी पत्नी थी गिद्ध की, उसको रात में मांस खाने की इच्छा हुई, तो उसने कहा कि हमको मांस चाहिए, ताज़ा मांस चाहिए, अभी चाहिए। गिद्ध ने बहुत समझाया, कहा कल सुबह देंगे, आज हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कल आप कैसे देंगे। तो वो घटना जो घटी थी विद्वान वाली, वो गिद्ध जंगल में दो सब देख रहा था, उसने बताया सीधी घटना हुई है और कोई विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पा रहा, कल सारे विद्वानों की फांसी हो जाएगी, हम आपको देंगे। जब वो बड़ोसी नाम के विद्वान जो वहाँ बैठे थे, ये सारी घटना जब सुन लिए, तो जाके राज दरबार में इसकी व्याख्या कर दिए और सारे विद्वान फांसी टल गई। वहीं उसने लिखा कि दिवा वीक्ष वक्तव्यम रात्रम नैव नैव च, दुष्टा सर्वत्र तिष्ठन्ति वट वृक्षे वन रुचिर यथा। गोस्वामी जी ने लिखा कि दामिनी दमक रही घनमाही और खलकी प्रीत यथा फिर नाही, जैसे बिजली आकाश में कौंसती है और फिर लुप्त हो जाती है, उसी तरीके से जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, इनकी मित्रता जो है ये इससे नहीं होती है, ये कब समाप्त हो जाए, कब मित्रता कर लें, कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ कहा भी गया है, स्वार्थ लेकर के अगर कोई संबंध हुआ है तो बहुत दिन चलता नहीं, टिकाऊ नहीं होता है। फिर मानस में आया है, कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध हरय मोह मदनाना। जैसे किसान जो चतुर किसान है, प्रगतिशील किसान है, वो खेती में फसल बोए हैं, सब्जी है, कोई फसल है, उसमें से घास, तमाम जितनी प्रकार की घास हैं सबको निकाल लेते हैं, फसल अच्छी होती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जिम बुध हरय मोह मदनाना, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके अंदर जो विकार है, जैसे मोह है, मद है, लोभ है, ये विकार हैं। तो जैसे घास बढ़ती है, फसल को चौपट कर देती है, उसी

0: तरीके से ये मोह मद लोभ ये मनुष्य चौपट कर देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि कृषि निरामय चतुर किसाना जिमी बुधाना मोह मद नाना। फिर मानस में ही एक प्रसंग आता है जिसमें रावण भगवान राम की दोनों सेनाएं समरांगण में आमने सामने हैं और विभीषण रावण के पौरुष को, रावण के साहस को, रावण के पराक्रम को वो जानता था। और ये देखा भगवान राम तो पैदल है, विभीषण घबरा गया। रावण रथी बीरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयव धीरा, नाहिन रस नाहिन पद त्राना, कह विधि जीतव रिपु बलवाना। तो भगवान ने कहा विभीषण को, वहीं समझाया है कि हमारे पास एक ऐसा रथ है, धर्म रथ है, अगर वो जिसके पास है उसको कोई जीत नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि हमारे पास ऐसा रथ है, सौरज धीरज अस रस चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हमारे पास ऐसा रथ है जिसके दो चक्के हैं, एक शौर्य का है, एक धैर्य का है। रावण का जो चक्का है वो शौर्य है, उसके पास धैर्य नहीं है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हमारे रथ में जो पताका लगा हुआ है वो सत्य का पताका है और शील का पताका है। रावण के पास न सत्य है न शील है। फिर भगवान ने समझाया, बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा दया समता रज जोरे, दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को डंडा। तो उन्होंने बताया कि हमारा ये धनुष है, श्रेष्ठ ज्ञान धनुष है और श्रेष्ठ संतुलित बुद्धि ये हमारी प्रचंड शक्ति है। और बाणों के विषय बताया कि हमारे संयम नियम इंद्रिय निग्रह ये हमारे बाण हैं। इस सखा धर्म में असर जाके जीत न सके कमोर युक्ता के, अय विभीषण जिसके पास ऐसा धर्म रथ होता है उसको कभी कोई जीत नहीं सकता है। ये भी बहुत सुंदर उपदेश गोस्वामी जी ने दिया है। अतः हम अभी अपने समाज के लोगों से, अपने देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जो कुछ नीत के वचन कहे हैं उस पर अमल करें, उससे उनका कल्याण होगा।
1: तो भैया देखा बद्री भैया नीति वचन रहा श्रीपद उपाध्याय।
2: अच्छा
1: भैया के देखा कहता नीक नीक बताएं कि भाई देखा अगर सत्य के आचरण करवा तो भाई निश्चित बाकी तनिक कठिनाई आई लेकिन सफलता अवश्य मिली।
2: हाँ भैया
1: बहुत सारी चीज बताएं कि भाई दुर्जन व्यक्ति कैसे होती, उनसे कैसे बच के रहा है और कैसे अपन आचरण ठीक रखा है।
2: हम कहे दुर्गा भैया देखा बातचीत होत रही, आवा तनी संदेशा बा, संदेशा सुना जाए।

0: हाँ भैया देखा सनेसो ही गया। अब जैसे कि भैया देखा भाई पंचायती में आते समय बातचीत होत रही कि देखा जब बारिश होत रहा था ना भैया, तो एक बड़ी समस्या आवा था अपने मवेशियन के रख रखाव उनका सेवा करे में, कि बारिश अब होगी देखा तो जहाँ अपने हम पशुशाला में उनका बांधा जा था गुरुवारी में बांधा जा था हूँ, आप देखा पानी भैया आ जा था, और चाहे पानी उनका देखा बहरे तो बांध नहीं सकते, रोज उनका हुआ बांधा एक बार तो ऐसी का होता कि जौन रोज के दैनिक उनकर क्रिया बा उस ओकर अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पावत, और एकरे कारण होत का भैया उनके नाखून में देखा तो वह कि जौन कींचा रहा था वो कींचा धीरे धीरे भैया आवत आवत बीमारी का कारण बन जाता।
1: कारण बन जाते हैं। तो कहे का मतलब बा कि बद्री भैया साफ सफाई जरूरी बा।
0: एकदम भैया अगर खुरपका से बचावे का है तो सबसे ज्यादा सावधानी यही मौसम में रखे का है कि जहां पे खुर रखा थीन अपन जानवर हुआ सूखा रखा, और सूखा रखा बेरे बहुत बढ़िया देखा घर में चाहे राखी होए माटी होए बालू होए कि साफ सफाई के बाद एकदम कह दे, या तो और बहुत लोग भैया आजकल देखा मैट वगैरह का नवा तकनीक आए बा कि मैट बिछाए दे थीन, तो यह एक बहुत बढ़िया उपाय है।
1: ना बिल्कुल बिल्कुल भैया, काहे से कि भाई देखा कहूँ ऐसा ना बांध दे भाई पानी टपकत रहा है रात भर, पानी अगर बरसत बाटे तो काहे का मतलब कि हर तरीके से कि भाई देखा 4 पैसा मिलत बाटे। तो उन्हों भाई आजकल जानवर भी देखा भाई महंगा है,
0: सही बात है।
1: तो बिल्कुल देख रेख करवा, जिसे भैया कहें खुरपका। तो आज भाई सरकार की तरफ से भाई देखा इस समय पशुअन के भाई टीका भी लगावल जात,
0: टीका, हाँ सही
1: तो
0: बात है।
1: डॉक्टर भैया से संपर्क कैला तो जौन आप बताए ना कि खुरपका मुंहपका के जौन रोग बाटे उसे कैसे बा? तो सबसे इस सबके जरूरी बात सफाई।
0: एकदम सही कहन भैया। और एक जैसे अपने किया भैया देखा पुरनिया हमेशा बनावे, आजकल नवा तरीका चला है कि लोग पूरा फर्श बनवाए देते हैं,

0: और कोशिश करा देन कि वहां साफ सफाई बड़ी अच्छी हो जाए, तो फर्श बनवाए देन ताकि गोबर ओबर टारक न पड़े, पानी छिट्टा मारे निकल गए। लेकिन देखा भैया, जो फर्श हो था ना, वो जो अपन जानवर है उनके चमड़ी का बहुत नुकसान पहुंचाओ था और हड्डी पे अतिरिक्त दबाव पड़ा था।
1: बिल्कुल नुकसान पहुंचावत है, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से तो नुकसान होबे करत है, प्रत्यक्ष मतलब फिसल गया जानवर तो भाई लेके दे पड़ी।
0: सही बात है। तो कोशिश भैया यह करें कि अगर पारंपरिक विधि अपनावत है, यानी वही माटी वाला अपन गुरुआ रहा है, तो हम सूखा रखे की व्यवस्था रखें, और अगर नई तकनीक पे जाते हैं तो आजकल देखा है कि एकदम जानवर के लिए अलग से मैट आती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भैया देखा, बहुत ज्यादा ऐसे में मौसम बदलता है, तो अपन ख्याल और लड़कन का ख्याल।
1: हाँ, लड़कन का दिल के ख्याल तो भाई बहुत ही जरूर।
0: नहीं तो आजकल भागा थी लड़किया पानी में कूदे।
1: और सबसे जरूरी जो उन बारिश के मौसम में भा भैया ऐसे समय वो बाटे साफ पानी।
0: हाँ, अगर रोग से बचे का है तो,
1: रोग से बचे का है तो पानी साफ पिया, ताजा खाना खा भाई, और साफ सफाई रखा।
0: और अगर भैया तनिको जुखाम या शरीर में दर्द महसूस होता है ई मौसम में, तो समझा कि सर्दी लागत यह है, तो गर्म पानी कोशिश करा कि पानी गर्माए क्योंकि बाद होगा पिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: तो भैया ये कहा कि देखा पंचायती में, तो जब हम लोग घरे से चले तब पंचायती में अपन घर इतनू कही रहेंगी पंचायत हम करे कहे घरे, तो जल्दी चला है।
1: जल्दी चला
0: नहीं तो भाई जाए के बाद भैया बवाल हुई तो चला पंचायत में चले के समय हो गया है। तो पंचो
1: राम राम, राम।

हमारे ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और डाउनलोड करना होगा न्यूज ऑन AIR ऐप और फिर हमारे केंद्र सेलेक्ट करने हैं आकाशवाणी प्रयागराज। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो सुनना मत भूलिए हमारे केंद्र से विविध रंगी कार्यक्रमों का प्रसारण। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संविद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे संबित स्वरूमी, ये देशभक्तिपूर्ण रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में

0: से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। आज ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की मंशा इस पर चर्चा करने की थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रुकावट पैदा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी।
1: युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। नई योजनाओं को घोषित कर

0: करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है।
1: उधर विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-2027 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 समेत 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। अब स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR की तर्ज पर इस क्षेत्र का भी मास्टर प्लान तैयार कर समग्र विकास किया जाएगा। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक, पर्यटन और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
2: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेशनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ के DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिवार किया गया।
1: उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क धंसने वाले स्थान पर यातायात का डायवर्जन कर दिया गया है और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल राजस्व की हानि की वसूली निर्माण और देखरेख करने वाली कंपनी से की जाएगी। मेडिकल परामर्श समिति ने NEET UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू कर दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवनों को एक रूपता के साथ डिजाइन किया जाए। साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। ये समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ, जौनपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं

0: और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के चलते आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट।
1: हर घर तिरंगा अभियान में 6 से 8 अगस्त तक चलने वाले पहले चरण में स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगे से प्रेरित कलाकृतियों से सजाया जाएगा। 9 से 12 अगस्त के बीच होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके अलावा तिरंगा महोत्सव, तिरंगा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच शिक्षण संस्थानों में रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। मेरठ, चौरी चौरा, झांसी किला, बिठूर, रेजिडेंसी, बलिया, सुहेलदेव स्मारक पर 9 से 15 अगस्त तक विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। इस अभियान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 2 करोड़ झंडों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ झंडे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित राम दरबार में दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म कर दी है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन के बाद सीधे प्रथम तल पर स्थित राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अमरोहा में आज पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रियों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने समुचित व्यवस्था की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं प्रस्तुत है सावन पर केंद्रित बोलते नगमे कार्यक्रम साजिश है बूंदों की, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की।

करते हुए भूतों की तरंग के साथ पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति जो हरितिमा ओढ़ कर नाचती है नेहा जी, तो उसको जो देखने का और उसे महसूस करने की जो एक बात होती है वो अपने आप में अद्भुत है।

0: वाह क्या बात है। इस गीत को सुनने के दौरान नेहा जी क्या कुछ याद आ रहा है, कोई पुरानी बात याद आई आपको?
1: मुझे याद है कि मेरी दादी बहुत काम किया करती थी खेतों में भी, वो कामदार चूड़ियाँ पहनती थी इस मौसम में। कामदार मतलब समझ रही हैं
2: जी, बिल्कुल,
1: जिसमें थोड़ी सी डिजाइन
2: होती है,
1: और खूब भर के पहनती थी और खेतों में काम भी किया करती थी। और मुझे याद है कि धान की बुआई हो या फिर इस मौसम में अनरसा बनता है, कई जगह ठेकुआ भी बनता है, तो इतनी सुंदर चीज़ें इस मौसम में लोग करते रहे हैं सदियों से, कि जब आप उसको देखते हैं और ख़ुद भी करते हैं तो न जाने कितनी सारी यादें अपने साथ लिए हुए होते हैं ना।
2: यादों के साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएं, तो ये जो महीना है खास तौर पर श्रावण का, वो महादेव को भी समर्पित है।
1: तो देखिए, सावन की इस रिमझिम में अंबर से पानी नहीं बरस रहा है
2: प्यार। धरती के आंचल पे बादल का संदेशा बन बूंदे गिरती हैं बेशुमार,
1: डाली डाली पत्ते बसते धानी धानी रंग बिखरते,
2: उम्मीदों के धनक खिल पड़े मन गाए राग मल्हार।

0: ये जो गाना भी हम लोगों ने सुना ना, डर लागे बरसे बदरिया, आहा, कितना सुंदर है ना।
1: जी
0: मुझे याद है कि उस दौर की फिल्मों में कुछ झोपड़ी भी हुआ करती थी और लोग बिजली जब कड़कती थी तो डर जाया करते थे, और अक्सर जो पुरुष थे वो कामकाज के सिलसिले में बाहर जाया करते थे ना,
1: जी
0: तो लोग अपनी विरह शायद इस गाने में जैसे व्यक्त किया गया है वैसे ही व्यक्त किया करते थे अपनी सखियों से, सहेलियों से। सावन यानी रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी महक, झूलों की मस्ती। झूला झूली हैं आप
1: बहुत झूला है नेहा जी।
0: नीम के पेड़
1: और
0: पे या
1: नीम के पेड़
0: पीपल?
1: पे नहीं, आम के पेड़ पे।
0: अच्छा, आम के पेड़
1: हमारे
0: पे
1: यहाँ सामने ही घर के सामने आम का बहुत बड़ा सा पेड़ था,
0: पेंग मारी है।
1: ऊंची ऊंची पेंग।
0: अच्छा, झूले पे पटरा रखती थी या फिर
1: पटरा,
0: कोई?
1: बहुत सारी सखियां सहेलियां होती थी। कभी
0: हाँ,
1: कभी वजन इतना ज्यादा हो जाता था कि
0: टूट
1: पीठ से
0: जाती थी।
1: टूट जाता था। उसकी जो यादें हैं नेहा जी, वो भी बहुत खिलखिलाती हुई सी आज महसूस हो रही हैं।

0: ये जो हरे रंग से वास्ता है जो धरती हमें देती है, और शायद उन्हीं रंगों को चुरा कर हम सभी महिलाएं श्रृंगार में हरा रंग शामिल कर लेते हैं, माँ पार्वती से आशीर्वाद भी लेते हैं सदा सुहागन होने का।
1: चूड़िया भी हरी होती हैं, परिधान भी हरा होता है, धरती भी हरी भरी सी नजर आती है।
0: और तो देखिए, मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं और रंग लाल दिए जाते हैं
1: क्योंकि वो प्रेम का रंग होता है।
0: देखिए, भारतीय सिनेमा ने भी सावन के इन रंगों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी गीतों में सजाया है।
1: तो दोस्तों, चलिए आप भी आइए हमारे साथ, हम सफर करते हैं साथ मिलकर उन यादगार फिल्मी गीतों के साथ जिनमें सावन कभी प्रेम बनकर बरसा, कभी विरह बन तड़पा और कभी उत्सव बनकर झूम उठा।

0: वाह, चिराग फिल्म का ये शानदार गीत मदन मोहन साहब के जादुई धुनों में सजकर कितना जीवंत होता है ना। और लता जी की आवाज का तलस्म दिल को कैद कर रहा हो। और मुझे बहुत प्यारी सी आशा पारेख जी, उनके नैन इतने बड़े हैं कि दूर से भी वो इशारे करती हैं और सुनील दत्त साहब बिल्कुल हूबहू वही कहानी पढ़ लेते हैं। वैसे दोस्तों, धरती के आंचल को अपनी सावनी बूंदों से सजाने को बेकरार, आकाश के दामन को छूकर निकली इन रिमझिम फुहारों को देख मन के एहसास भी मचल उठते हैं ना।
1: तो दिल के मचलते एहसास की ये सरगोशियां गीत संगीत की इन तरंगों में ढल कर यूं बरसती हैं, मानो अभिनंदन कर रही हो वो सावन के इस सुहाने मौसम का।

0: बारिश की बूंदें जब शहर की सड़कों पर गिरती हैं, तो हर दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा लगने लगता है। यही तो फिल्म संगीत की खूबसूरती है।
1: दिलचस्प बात यह भी है कि हिंदी फिल्मों में बारिश के गीत सिर्फ रोमानियत भरे नहीं होते, बल्कि कई गीतों में बारिश उम्मीद लेकर आती है, तो कहीं बिछड़ने का दर्द और इंतजार भी होता है उनमें।
0: देखिए, सावन का महीना भारतीय त्योहारों से भी जुड़ा हुआ है। हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे पर्व इस मौसम को और भी रंगीन बना देते हैं। इसीलिए फिल्मों में भी इस मौसम को उत्सव के रूप में बखूब प्रस्तुत किया जाता रहा है।

0: पूरा माहौल झूम उठ रहा है नेहा जी। और हमारे जो लिसनर्स हैं, जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आज पूरी तरह से सावनी फुहारों में भीग रहे होंगे, सराबोर हो उठे होंगे। और साथियों, गर्मी में तपती धरती और सूखती ज़मीन पर जब बादल की बूंदें पड़ती हैं, तो सच मानिए मन मयूर कुछ यूं ही झूम उठता है, जैसे कि अभी अभी हम इस गीत को सुनते हुए झूम रहे थे।
1: हाँ, जब मन करे और बारिश की बूंदें पड़ रही हों एक धार की तरह, आपके पास समय हो तो समय को निकालिए और भीग लीजिए इन बूंदों में, क्योंकि शायद ये जो अंबर से प्यार बरस रहा है ना, हर बार नहीं बरसता, जब बरसे तो उसे अपने अंदर बिल्कुल मुट्ठी में कैद कर लीजिए, है ना।
0: अच्छा नेहा जी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे।
1: जी जी
0: जी, हम तो फिल्मी गीतों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साहित्य में जाते हैं,
2: वहाँ भी बहुत कुछ रचा गया है इस मौसम को लेकर,
0: चाहे वो कालिदास का मेघदूतम हो या नीरज की रचना हो, और पंत जी ने, निराला जी ने बहुत कुछ लिखा है। और जब वो लिखती हैं महादेवी वर्मा जी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, तो उनकी विरह वेदना भी उजागर होती है उसमें। लेकिन उर्दू अदब में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे गीत, बहुत सारे नगमे, नज़में और गज़लें लिखी गई हैं।
2: तो चाहे वो अमीर खुसरो साहब हों, नज़ीर अकबर आबादी साहब हों, या फिर निदा फाजली हों, और इस समय फ़िलहाल जो याद आ रहा है वो है चंदन दास जी का वो नगमा, जो इस मौसम को इतनी खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पर बारिशें आफत और राहत की तरह से जो हमें महसूस होती हैं, वो सब कुछ इस गीत में पिरो दिया गया है।
1: मैं सुनूंगी।
0: तो सुनिए।

0: इस गजल में कितने सुंदर ढंग से धूप और बारिश को एक साथ दिखाया गया है। जीवन भी ऐसा ही होता है, लोगों को एक तरफ बहुत सारी खुशियां मिलती हैं तो कई बार इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, दरअसल वर्षा ऋतु जो है ना, कुछ ऐसी ही है जो हमारे भीतर अनेक अरमानों और सपनों को जन्म देती है। जमी से उठी भाप को जल की बूंदों में बदलकर दोबारा धरती पर बरसा देना बादल का स्वभाव है। लेकिन इन दिनों बादल ने अपना ये स्वभाव धरती को सौंप दिया है। बादल सोने से हैं और धरती बरस रही है। मनुष्य के मन मेघ हो गए हैं जो पूरे वेग से उठकर आंखों के आकाश में छा जाते हैं और फिर मूसलाधार बरस पड़ते हैं। दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि आखिर ये बात क्यों कही गई, आप हमें लिख कर जरूर बताइएगा।
1: और अगर हम इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों, तो प्यार में डूबे दो दिल जब मेघ को पुकारते हैं तो फजाओं में मनुहार के रंग छा जाते हैं।

0: ये गीत दोस्तों जब ही भी सुनते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हम मनुष्य सीधा संवाद उन बादलों से, उन मेघों से कर रहे हैं। कहते ना कि हर रोम को ठंडक देने का काम जो कर सकता है वो मेघ ही कर सकता है, कोई और नहीं।
1: और देखिए ना, मेघों की अनुनय विनय करती दो दिलों की ये जो पुकार थी,
0: हाँ,
1: वो सावन के मौसम को और भी दिल फरेब बना देती है। और दोस्तों, समय बदलता गया, संगीत की शैली भी बदली, लेकिन बारिश और सावन का रिश्ता फिल्म संगीत से कभी नहीं टूटा।

0: जल्दी ही आज के संगीत में आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, नई तकनीक है, लेकिन जब बात बारिश की होती है तो वही भीगी हुई सी भावनाएं, वही धड़कनों की रफ्तार और वही प्रेम का एहसास सुनाई पड़ने लगता है।
1: और बारिश पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये हर पीढ़ी को अपनी कहानी सुनाते हैं। किसी के लिए पहली मुलाकात है, किसी के लिए पहला प्यार है ये बारिश, किसी के लिए बचपन की यादें, तो किसी के लिए ये बूंदे साजिशें रचती हुई सी प्रतीत होती हैं। जरा ध्यान से सुनिए तो सब समझ में आ जाएगा।

0: सुनो निगम और सुनिधि चौहान ने तो मतलब करिश्मा सा कर दिया
1: जी।
0: मन करता है कि सच में इन बूंदों को पकड़ पकड़ के रख लें, लेकिन हम मनुष्यों के पास ये कला कहाँ। मुझे लगता है शायद सिर्फ हम सिर्फ एहसास को संजो सकते हैं। आसमान से गिरती बूंदों का इतना सुंदर पिक्चराइजेशन तो दुर्लभ है। कैमरे का काम बहुत सुंदर है। फना फिल्म का ये जो गीत है, ये जो जज्बात अंदर उभर रहे हैं, उसकी बयानियां कर रहा है।
1: वैसे दोस्तों, इस समय अगर आप खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ हमारे इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो यकीन मानिए संगीत और मौसम का ये संगम आपकी सुबहों और शाम को और भी खूबसूरत बना देगा।
0: सावन का ये मौसम हमें ये भी सिखाता है कि हर सूखेपन के बाद हरियाली आती है, जैसे धरती बारिश की बूंदों से खिल उठती है। वैसे ही संगीत भी हमारे मन को नई ऊर्जा से भर देता है।
1: और अब नेहा जी, चलने का थोड़ा थोड़ा समय आ रहा है नजदीक, लेकिन एक वो गीत जिसके बिना ये सावन अधूरा है, फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा है, और हमारे मन में उठती हुई जो भावनाएं होती हैं सावन को देखकर, इन बारिश की बूंदों को देखकर, वो भी अधूरी सी प्रतीत होती हैं। तो चलिए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं इस गीत के साथ।

0: मौसमी चटर्जी की जो चंचल शोख अदाएं हैं ना, दिल पर राज करने लगती हैं।
1: और हम इस गीत को जब देखते हैं पर्दे पर, तो जो झमाझम बारिश मुंबई की है उसका कहना ही क्या।
0: तो दोस्तों, सावन का मौसम हर बरस आता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी यादें और गीत हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं।
1: उम्मीद है सावन का मौसम और फिल्म संगीत पर आधारित ये हमारी विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी दोस्तों।
0: तो इसी तरह संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौसम के हर रंग का आनंद लेते रहिए।
1: तो अब दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी बोलती नगमी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सावन पर, साजिश है बूंदों की। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की, प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रही हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर ढाई घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी

कर्मचारियों की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ. एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को

ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लोकसभा में जान

जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशभक्ति पूर्ण रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संबित सरूमी, ये देशभक्तिपूर्ण रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: विधान मंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
2: इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानसून सत्र 4 दिन के बजाय 3 दिन में ही समाप्त हो गया। इसी शोर शराबे और हंगामे के बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा। सपा सदस्यों द्वारा मंगलवार को नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान किए गए शोर शराबे और हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंसदीय बताते हुए क्षोभ व्यक्त किया। बावजूद इसके चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर सपा के सदस्य आज फिर वेल में आकर शोर शराबा और हंगामा करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 1.5 घंटे तक बाधित रही। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। आज ही सदन में संबल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोर शराबे और कल की घटना पर क्षोभ जताते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं था। हमें यह तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष संवाद सहमति और असहमति हो सकती है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि संविधान की गरिमा और उसकी महत्ता के अनुकूल सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वाद विवाद सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने कहा कि कल जो सदन में हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूँ। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि यहाँ आप सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर विचार रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या परंपराएं छोड़ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों को कितना सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी सदस्यों ने मीडिया और सोशल मीडिया को यहाँ के वीडियो और फोटोग्राफ्स दिए हैं, उसे प्रसारित किया गया है। ये आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया था। इस दौरान सपा के विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनका निलंबन किया गया था। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे

0: ने कहा कि उनके दल के सदस्यों ने 2 घंटे तक अनुनय विनय किया, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो सदस्यों को वेल में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में 311 में स्पष्ट है कि सदन के सारे काम रोककर किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। यदि कल इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सदन में कल जो भी हुआ वो लोकतंत्र का हिस्सा था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा सपा सदस्यों के आचरण पर व्यक्त किए गए क्षोभ पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आपने सदन का संचालन सुचारू रूप से किया है। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 सालों में यूपी विधानसभा का कार्य संचालन देश की बाकी विधानसभाओं के लिए नजीर बना।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मानसिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाह नवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण छात्रों के आंदोलन पर सरकार की नीति का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यहाँ लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होकर परीक्षा रद्द हो जाती तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। पिछले 9 वर्षों में 20 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द हुई। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पेपर लीक गंभीर विषय है, छात्र आंदोलित हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा सदस्य शिक्षा और परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकें इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये देश के 30 करोड़ नौजवानों से जुड़ा विषय है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये मुद्दा नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कई बार टोकाटोकी और विरोध के बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया, लेकिन सपा सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय, सरकारी प्राइमरी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने में होने वाली कठिनाइयों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन की व्यापक जांच कराई जाए। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर पट्टे दिए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर विभागीय एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे सभी अवैध पट्टों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा सार्वजनिक भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों में मूल स्वरूप में दर्ज कर उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध आवंटनों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद सभापति सलिल विश्नोई के सभापतित्व में बैठक हुई। कार्यसूची की मदों को निपटाया गया। याचिकाओं को याचिका समिति को संदर्भित किया गया। प्रमुख सचिव विधान परिषद ने 12 विधेयकों को सदन की मेज पर रखा, जो ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026 भी पारित हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के

0: लिए स्थगित कर दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लक्ष्य।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं सोनू निषाद। इनके स्वर में हम आपको पहले ये भक्ति रचना सुनवाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं सोनू निषाद। इस खालसा भक्ति रचना के बाद प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में सुनिए राजा ज्योतिषी का लिखा ये गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी राजा दुर्जी का लिखा ये गीत सोनू निषाद के स्वर में। आपके साथ संगत कलाकारों में शामिल थे तबले पर दीपक कुमार साव, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल, ऑक्टोपैड पर सुनील मिश्र, ऑर्गन पर जयंत बोस और बांसुरी पर थे शिवम श्रीवास्तव। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

0: सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
3: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
4: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम-ए-इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए

0: विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए

0: और 13 पैसे पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb are among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including

0: शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलीहा, ईशा रानी बरुआ एंड श्रेयांसी वाली शेट्टी progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikant, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first round defeats. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharbamang, seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. The participants are Subimal Bhatt.
2: मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है. दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं. वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फ़रोग मिला है. भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है. और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं. अब खबरें तफसील से. पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है. राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया. लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था. ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी. कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया. राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अदलिया पर बढ़ते काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की ज़रूरत और एक बरवक्त असलाह है. हमारे नाम निगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी. मजीद तफसील हमारे नाम निगार से.
3: सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है. इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे. अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज़्यादा मुकदमात निपटाए गए. सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फ़र्क मौजूद है. तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा.

0: दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स के शवाहिस से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निज़ाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निज़ाम की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तिज़ाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आरई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात से वाकिफ है, जिनमें नुकसानदेह मवाद तक रसाई, साइबर तरीके से डराना धमकाना, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल दश शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत आलमी वाकयात और ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक बदलते हुए बैन अक्वामी इंजिबाती तरीक़ेकार से आगाह रहती है, जिनमें डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी इख्तियारात के तहत किए गए इकदाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ज़ाती डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कानून 2023 नाफिज किया जा चुका है, जो डिजिटल ज़ाती डेटा की खातिर एक कानूनी तरीक़ेकार कायम करता है। डीपी एक्ट बच्चों की ऑनलाइन राजदारी के तहफ्फुज़ के लिए एक कानूनी तरीक़ेकार भी फ्राहम करता है। मेटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है, के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दिगर मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म के कामकाज में खामियों पर माजरत का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मेटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मेटा को वाजे किया कि वो सिर्फ सालिस प्लेटफॉर्म की तारीफ के तहत नहीं आती, बल्कि वो खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस तारीफ को दिखाया जाए। इस पर मेटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। आज दफ़ा 370 और 35A को तारीखी तौर पर मनसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2019 में आज के दिन ही दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचों में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक़ नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अज़्म का यादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो। दफ़ा 370 को मनसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: दफ़ा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिरखा तरक्की हुई है। मरकज के सिर इंतज़ाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, अवामी खिदमात और इकतसादी तरक्की के जरिए यकसर तब्दीली आई है, जिससे हुक्मरानी और मेयार ज़िंदगी बेहतर हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर को निशान

चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्म ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को, जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गईं। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खवातीन के डबल्स के मुकाबले में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर कोरिया की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गईं। मिक्स डबल्स में छठे दर्जे की शरुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी एहसास मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं। वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसा लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही, अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट

0: और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
1: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो हैं वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूचुअल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
0: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे जो निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पे डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है उस एसओपी में क्या क्या चीज है। आप देखिए, अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से

0: कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से, जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाएं बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है, उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है। तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है, का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है, तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर

0: इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
1: देखिए, आपने जो बात कही पहले, उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अनटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे या पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा, अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसीज अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
0: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है सारे

0: जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है। इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
1: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरे पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डेलिजेंस के साथ, सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। BC मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डेलिजेंस के साथ, सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में, हम खाना खाने गए, अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
0: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो AI के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। AI दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से AI की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम AI की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो AI के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि AI में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास वो नंबर भी, सिम कार्ड जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से AI टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे

0: से आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो। तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है। पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं। यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझेदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहे, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहे कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और

0: बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार शैलेंद्र के लिखे चुनिंदा नगमों पर। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। तुम्हारे होने से जिंदगी एक कविता बन गई है, एक गीत बन गई है। जिंदगी की राहों में तुम्ही से तो सारी महक और सारी चहक है। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते कट जाएंगे आसानी से अगर तुम्हारा साथ हो।

सोचता था कैसी कटेंगी रातें परदेश की। ये चांद तो वही है अपने आंगन वाला, जिसे सदा हमने अपने साथ रखा है। गर्मियों की रातों में उस छोटे शहर में चांद छत पर टंगी कंदील था। इस बड़े शहर में चांद समंदर पर चमक बिखेरता लाइट हाउस था। जिंदगी के मुश्किल दिनों में चांद जेब में चमकता सिक्का था। कितने कितने रूप इस चांद के हैं, जरा सोचिए तो। चांद में तुम्हारी झलक भी देखी है हमने। कितनी वजहें हैं चांद को हमेशा अपने साथ रखने की।

इंतजार की जादुई डोर जो कभी कभी एकदम छोटी सी होती है और पता नहीं चलता कब खत्म हो जाती है, पर अक्सर इंतजार का सिलसिला बड़ा लंबा खिंचता है। जिंदगी में जिस चीज का इंतजार किया उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। तुम्हारा इंतजार सबसे बड़ा इम्तिहान रहा, इंतजार जिसमें हम नहीं रहते, हम तुम हो जाते हैं।

जब इंतजार लंबा खींचना होता है तो खींच ही जाता है, कुछ भी आपकी बस में नहीं होता। उदासी की एक लहर आती है और भिगो कर चली जाती है, पर उसे इतने से तसल्ली नहीं होती। दूसरी लहर आती है, वो भी भिगो कर चली जाती है। पहले की उदासी ज्यादा गहरी और ज्यादा संगीन बन जाती है। ऐसे में जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब भी तो कुछ अच्छा लगता है। ऐसे में वो है तुम्हारा ख्याल।

इत्र सा महका अचानक अचानक जैसे खेल सा गया सब कुछ। ये तुम्हारा आना था जिसने सब बदल बदल सा दिया, जैसे अचानक ही बज उठा हो कोई साज और सब कुछ तिलस्मी चादर से ढक गया हो। तुम्हारे जुड़ाव और प्यार ने रंग भर दिए हैं हमारे संसार में। ये सतरंगी संसार किसी मासूम बच्चे की सपनीली ड्राइंग बुक में बदल गया है।

जिंदगी के मोड़ को कभी कोई समझ नहीं सका है। जिंदगी कोई गणित का समीकरण नहीं है कि यहां सब कुछ तयशुदा तरीके से होता रहे। जिंदगी के अपने लय हैं, सुर हैं। जिंदगी की इस खूबसूरती को शिद्दत से जीना है हमें। अपनों का हाथ कसकर पकड़े रहना है, बांटनी है मुस्काने, साझा करने हैं आंसू, और बस जिंदगी की स्लेट पर तसल्ली की इबारत लिखती जाए।

श्रोताओं, हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उनके नाम इस तरह से ही संगम। काला बाजार,

इसी के साथ अपने दोस्त संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी गीतकार शैलेंद्र के चुनिंदा नगमों पर केंद्रित ये फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हम अभी हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गौरी शंकर का राग यमन में क्लैरियोनेट वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप श्री गौरीशंकर का क्लैरिनेट पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

धरातली। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मीटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मीटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मीटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले